सुप्रभात, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। प्रातः के 5:58:40 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल

0: क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। उड़ीसा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो वंदना कार्यक्रम के आज के अंक में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं इस सुहानी सुबह में। और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनेक तरीके की लकड़ी होती है, लेकिन एक लकड़ी होती है जिसका नाम है चंदन, यानी चंदन की लकड़ी। अब विशेषता क्या होती है? चंदन की लकड़ी में एक खुशबू होती है, और इससे ऊपर की विशेषता की अगर हम बात करें, अगर उसको जितनी बार आप पानी में घिसेंगे ना, उसकी खुशबू दूर तलक जाएगी, उतनी बार खुशबू उसकी दूर दूर तक महकेगी और आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे ही अगर हम प्रभु का नाम लें, अपने इष्ट का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, या किसी भी रूप में उस ईश्वर को हम याद करें, कहने का मायने है जितनी बार, हर रोज, हर सेकंड और सभी वक्त अगर हम किसी ना किसी रूप में अपने ईश्वर को याद करें, उनकी भक्ति करें, तो ईश्वर की कृपा हमें उतनी ही बार मिलती है जैसे चंदन की लकड़ी को पानी के साथ घिसने से उसकी खुशबू उतनी ही बार मिलती है।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के नजी बाबा केंद्र से सुन रहे हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं जोगिंदर कौर और साथियों की आवाजों में ये शब्द।

0: शब्द के बाद अब हम आपको सुनवाएंगे ये नाते पाक, जिसमें आवाजें हैं सखावत हुसैन खां और साथियों की।
1: मेरे अच्छे रसूल, मेरे अच्छे रसूल,

तिश्निगी का इलाज संगे अस्वद के पास, चारा इख्तिलाज सब्ज गुंबद के पास,

श्रोताओं, आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन समर्पित होता है श्री सूर्यदेव जी को। सूर्यदेव आकाश से सभी को प्रकाशमान करते हैं और निष्पक्ष

श्री सूर्यदेव जी की इस आरती के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकई के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गई।

ने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे ए हरिहरन और संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, यो न ईर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान में प्रियो नरः। यानी जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, जो न शोक करता है न आकांक्षा ही रखता है, जो शुभ अशुभ का समान रूप से परित्याग करता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। मोह बड़ा प्रबल है, सारा संसार इसके चक्र में फंसा हुआ है, परंतु मोह त्यागने का अर्थ वैराग्य नहीं है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है कि संसार के कर्तव्यों से विरक्त होने को वैराग्य नहीं कहते, फला फल का त्याग ही सच्चा वैराग्य है। अपने कर्तव्य कर्मों की निष्ठा ही हमें वैसा निष्कर्म बना सकती है। उन्नति का लक्ष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ना है। संसार का धन बटोर लेना या जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ा लेना ही उन्नति का सूचक नहीं है। हम कहीं धन संग्रह के रोग से ग्रसित न हो जाएं। धन का लोभ सच्चे आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। संत कबीर ने इस भक्ति मार्ग

0: प्रेम का मार्ग बताया। कहा कि ये मोह मुक्ति इतनी आसान नहीं है। जिसमें अपना सब कुछ लुटा देने का सामर्थ्य हो, वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। स्वामी विवेकानंद ने मोह माया से उबरने को कहा कि दुनिया में घुसो और कर्म के रहस्य को सीखो। संसार की मशीन के पहियों से मत भागो। दुनिया में भी अपने लिए ही मत जियो, दूसरों से प्रेम करो। बाइबल में लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाए। यदि केवल उन्हीं से तुम प्रेम करते हो जो तुम्हें प्रेम करते हैं, यानी इसका यह अर्थ हुआ कि हम केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो हमारी मदद करते हैं, तो फिर इसमें पुण्य की क्या बात है। गुरु नानक ने कहा, जो कोई सत्य से प्रेम करता है वही पवित्र है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना है कि बौद्धिक संकीर्णता, जातिगत और धार्मिक भेदों से हमें कोसों दूर रखता है। हमारा उद्देश्य भलाई को बढ़ाना और बुराई को दूर करना होना चाहिए। सत्य और न्याय के अवलंबन से भलाई जितनी बढ़ती है, बुराई उतनी ही घटती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, दुख का एकमात्र कारण अज्ञान है। इस अज्ञानता से उबरना होगा। छोटे छोटे स्वार्थ, धन लोलुपता, अपनी अतृप्ति से स्वयं को हम स्वयं ही उबार पाएंगे। महावीर स्वामी कहते हैं, तो अपना दीपक आप बन। अपने ही ज्ञान के आलोक से हमें मुक्ति मिलेगी। सचमुच जीवन की राह बहुत कठिन है, पर ऐसी भी कठिन नहीं कि पार ना जाया जा सके। अपने आप को स्वयं मांझना होगा, तभी हम मोह माया से उबरने के मंत्र जान सकेंगे। वैराग्य से नहीं, वो तो जीवन से पलायन है।
1: ये था हमारा आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। काव्यधारा में लीजिए सुनिए श्री करमवीर सिंह का ये काव्य पाठ।
2: सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मेरी सरस्वती वंदना है।

0: आगी। कुछ मुक्तक हैं बेटियों के लिए। बेटियां महान होती हैं, हर घर की शान होती हैं। बेटियां महान होती हैं, हर घर की शान होती हैं। इन्हें बचाकर तो देखिए, ये नए युग का निर्माण होती हैं। इन्हें बचाकर तो देखिए, ये नए युग का निर्माण होती हैं। ये दूसरा मुक्तक है बेटियों पर। बेटियां आती हैं, हम रोते बहुत हैं। बेटियां आती हैं, हम रोते बहुत हैं। जब जाती हैं बेटियां, हम रोते बहुत हैं। बेटियां आती हैं, हम रोते बहुत हैं। जब जाती हैं बेटियां, हम रोते बहुत हैं। हंसना सभी का बहुत मुश्किल हो गया। हंसना सभी का बहुत मुश्किल हो गया। जब रोती हैं बेटियां, हम रोते बहुत हैं। जब रोती हैं बेटियां, हम रोते बहुत हैं। एक मुक्तक है पर्यावरण के लिए। हवाओं से दोस्ती करना ही जीवन की हकीकत है। हवाओं से दोस्ती करना ही जीवन की हकीकत है। कुदरत से दगाबाजी बगावत ही बगावत है। अगर खिलवाड़ तुम ज्यादा करोगे धरती अंबर से, समझ लो कुछ कदम आगे कयामत ही कयामत है। समझ लो कुछ कदम आगे कयामत ही कयामत है। एक मुक्तक है अपने गुरु के लिए। अपने गुरु को तीन देवों के बराबर मान लो। अपने गुरु को तीन देवों के बराबर मान लो। लोक में परलोक में सर्वोपरि स्थान दो। अपने गुरु को तीन देवों के बराबर मान लो। लोक में परलोक में सर्वोपरि स्थान दो। अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान चक्षु खोल दे। अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान चक्षु खोल दे। शत शत नमन ऐसे गुरु को मान दो सम्मान दो। शत शत नमन ऐसे गुरु को मान दो सम्मान दो। अपने गुरु को तीन देवों के बराबर मान लो।
1: काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे श्री करमवीर सिंह का ये काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य सप्ततितमं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरं एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति।

0: तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य पञ्चसप्तति वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपा दलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नव मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलग वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथ

0: ने श्री रंगास्वामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरल में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्कैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है गर्मियों में गुणकारी सत्तू।
2: भोजन में सत्तू का एक उल्लेखनीय स्थान रहा है। अनेक काव्य ग्रंथों से भी पता चलता है कि प्राचीन काल में युद्ध एवं यात्रा के दौरान राजा और सेनापति सहित उनकी सेनाएं सत्तू खाकर रहती थीं। आप अपनी पसंद के अनुसार नमकीन या मीठा दोनों तरह से सत्तू का सेवन कर सकते हैं। फिर आजकल तो जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लोगों के पास समय की भारी कमी है। इस दृष्टि से सत्तू बहुत ही उपयुक्त देसी फास्ट फूड है। इसका सेवन नाश्ता, भोजन और ठंडा पेय तीनों ही रूपों में तुरंत किया जा सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे सत्तू की। चना, मकई या जौ वगैरह को बालू में भूनने के बाद उसको आटा चक्की में पीसकर बनाए गए चून को सत्तू कहा जाता है। चने वाले सत्तू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मकई वाले सत्तू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इन दोनों प्रकार के सत्तू को अकेले अकेले या दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाकर सेवन आप कर सकते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग चने के सत्तू का सेवन करते हैं। आज तो विश्व के प्रमुख नगरों में जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, पेरिस, टोक्यो, तेहरान आदि के बाजारों में चने का सत्तू बिकता नजर आने लगा है जो सिर्फ भारत में निर्मित और पैक होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि चने से शरीर को बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। प्रति 100 ग्राम चने के सत्तू से 372 कैलोरी मिलती हैं। चने के सत्तू में विटामिन ए की प्रचुरता प्रति 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम रहती है, इसलिए इसके सेवन से आंखों की ज्योति भी अधिक बढ़ती है।

0: फास्फोरस की मात्रा भी अधिक रहती है, इसलिए दिमागी कार्य करने वालों के लिए भी सत्तू का सेवन लाभकारी है। चना एक उत्तम बल प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। एक उत्तम शीतल पेय होने के चलते गर्मी के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। चने का सत्तू भरी खस्ता कचौरी भी लोग बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। चने के सत्तू को गुणकारी और पौष्टिक माना जाता है। यदि चने के सत्तू में काला नमक, जीरा, सौंठ, धनिया इत्यादि मिला दिया जाए तो वो एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कफ की शिकायत में लाभदायक तथा याददाश्त और आंखों की ज्योति बढ़ाने वाली एक उत्तम औषधि बन जाता है। हृदय रोगियों के लिए चने के सत्तू का सेवन लाभकारी माना गया है। चने के सत्तू में चौथाई भाग जौ का सत्तू मिलाकर समुचित मात्रा में शक्कर मिलाकर खाएं, गर्मी के मौसम में बेहद फायदेमंद है। जौ का सत्तू तासीर में ठंडा, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, कफ तथा पित्त नाशक तथा मोटे व्यक्तियों को पतला करने वाला है। ये पानी में घोलकर पीने पर ताकतवर, शरीर को सुडौलता देने वाला, मल को निकालने में सहायक तथा बल और संतुष्टि देने वाला होता है। ये कफ, पित्त, भूख, प्यास और नेत्र रोग नाशक है। चावल का सत्तू भूख को बढ़ाने वाला, पाचन में हल्का, ठंडा, मधुर, रुचिकारक तथा बल बढ़ाने वाला होता है। गर्मी के मौसम में पानी में चने का सत्तू मिलाकर पीने से शरीर को ठंडक प्राप्त होती है, इसलिए मुंह लगने का डर नहीं रहता है। चना कफ नाशक है। यही कारण है कि रात को सोते समय एक पाव दूध में दो बड़ा चम्मच चने का सत्तू मिलाकर पीने से श्वास नली में जमा कफ सुबह निकल जाता है और खांसी मिटती है। गुड़ मिलाकर चने के सत्तू का रोज सेवन करने से कुछ ही दिनों में बहुमूत्रता या बार बार पेशाब आने की समस्या दूर हो जाती है। चने के सत्तू का सेवन सभी प्रकार के पाचन संबंधी रोगों में गुणकारी पाया गया है। इतने सारे अद्वितीय गुणों से भरपूर सत्तू का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय था गर्मियों में गुणकारी सत्तू। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाई सुने खेती की बातें। आज का विषय है आम के बागों में सामयिक कार्य।
2: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रमोद सिंह। किसान भाइयों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है आम के बागों में होने वाली सामयिक कार्य। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने आम के बाग लगाए हुए हैं और इस समय उनको बहुत सारे काम अपने आम के बागों में करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो समय पर ना किए जाएं तो उनसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने में आम के बागों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण जो काम हैं वो हमें जरूर करने चाहिए ताकि आप अपनी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बेहतर बना सकें। किसान भाइयों, आम की फसल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय अधिकांश क्षेत्रों में आम के फल विकास की अवस्था में हैं और ऐसे में बागों की सही देखभाल से फलों का आकार, रंग और स्वाद बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आम के बागों में सिंचाई प्रबंधन की। तो इस समय तापमान भी काफी अधिक हो जाता है जिससे मिट्टी में नमी तेजी से कम होती है, इसलिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखें कि बाग में जल भराव ना हो क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। हल्की और समय समय पर सिंचाई करने से फल गिरने की समस्या भी कम हो जाती है। इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना होगा कि अपने बागों में हल्की सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, बात करते हैं मल्चिंग की। पेड़ों के चारों ओर सूखी घास, पत्तियां या पॉलीथीन बिछाकर मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। इससे पौधों को पर्याप्त पोषण मिलता है। फल गिरने की समस्या इस समय आमतौर पर देखी जाती है। इसके नियंत्रण के लिए 2,4-D या नेपथेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर किया जा सकता है। ये छिड़काव फलों को पेड़ पर बनाए रखने में मदद करता है और अगर हम ये सारे काम अपने आम के बागों में करेंगे तो आम की फसल हमारी अच्छी हो सकती है। जहां तक आम के बागों में लगने वाले कीट और रोग के प्रबंधन की बात है तो देखिए किसान भाइयों, इस समय आम में फल मक्खी, आम का भुनगा और मिलीबग जैसे कीट सक्रिय हो जाते हैं। फल मक्खी से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें और गिरे हुए फलों को तुरंत नष्ट कर दें। यदि आवश्यकता हो तो अनुशंसित कीटनाशकों का ही

0: से हमारे पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और फल भी हमें अच्छे प्राप्त होंगे। इसके अलावा बाग की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। गिरे हुए फल, सूखी टहनियां और पत्तियों को हटाकर हमें नष्ट कर देना चाहिए। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है। किसान भाइयों, यदि तेज आंधी या लू चलने की संभावना है तो पेड़ों को सहारा दें और नमी बनाए रखने के उपाय जरूर करते रहें। छोटे पौधों को विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है। ये ऐसे काम हैं जो हमें इस समय अपने आम के बागों में करने हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम अपने आम के बागों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप अपने आम के बागों की इस समय विशेष रूप से देखभाल करेंगे। कोई रोग या कीट आपको अगर दिखाई दे रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आप काम करेंगे। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था आम के बागों में सामायिक कार्य। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी रात 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे। कुछ खास है आज, झलकी, बूस्टर्स और फिल्म संगीत के।

आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से सुवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता का विषय रहेगा फसल अवशेषों के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करना।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: गर्म है।
1: श्रोता, ये आकाशवाणी चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
4: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
3: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
5: स्वगणना कार्यक्रम है, ये देश विरोधी कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हम एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना संवेदना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
3: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
6: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
3: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
7: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया।

प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें तीनों लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक वाद विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। रविवार की एक नई सुबह में और छुट्टी के दिन, इस सुहानी सुबह में हम अपने सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई सूरज के साथ साथ का आज का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया, अब इसमें रहेगा क्या क्या क्या क्या हम आपको जानकारी देंगे, जरा सा ये भी बता दें पहले। तो जानकारी दी जाएगी 1857 ईस्वी की महान क्रांति का आरंभ,

0: जो आज यानी 10 मई से शुरू हुई थी। तो क्यों हुई थी ये बताएंगे। एक बीमारी है जिसका नाम है ल्यूपस। तो आज हम मना रहे हैं विश्व ल्यूपस दिवस, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक पेड़ है जिसका नाम है अर्गोनिया। इस पेड़ के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और एक चर्चा और रहेगी हमारी मातृ दिवस की, उसे भी मना रहे हैं हम, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चर्चा हम शुरू कर लेते हैं। सन 1856 में श्रोताओं, अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस की जगह एक नई एनफील्ड रॉयल का प्रयोग करने का फैसला किया। उसके कारतूस की एक खास बात थी कि उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, यानी ये दोनों ही जानवर उस समय प्रतिबंधित थे। और ये कारतूस ही सन 1857 ईस्वी की महान क्रांति का कारण बने। 29 मार्च सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने इन कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया। अंग्रेजों को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी। हम आपको बता दें कि मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI से था। उनकी फांसी के बाद 10 मई सन 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी, वो जो टुकड़ी होती है ना या सैनिकों की, उसका नाम था 20NI यानी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने इस महान क्रांति की शुरुआत कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यहीं से 1857 की महान क्रांति का आरंभ हुआ, जिसे हम आज भी याद कर रहे हैं। तो ये जानकारी हुई 1857 ईस्वी की महान क्रांति का आरंभ के बारे में। जुड़ेंगे अभी आपसे, एक संदेश सुनवा दें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, आज मई महीने का दूसरा रविवार है और आज हम मना रहे हैं एक बहुत ही अहम दिवस जिसका नाम है मातृ दिवस या माता दिवस। जी हाँ, वही माता जो हम सबको जन्म देती हैं, हम सबका पालन पोषण, खुद अनेक दुख सहन करके बेहतर करने की सफल कोशिश करती हैं और कामयाब भी होती हैं। हम आपको बता दें कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को ये दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सभी माताओं का सम्मान किया जाता है। श्रोताओं, माँ हमेशा अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं और ये प्यार निस्वार्थ होता है, उसके प्यार में त्याग होता है। न जाने कितनी रातें जागकर माँ अपने बच्चों को सुलाती हैं। यूं तो हर दिन माँ के सम्मान के लिए होता है और हमें हर रोज अपनी माँ को सम्मान का अधिकारी मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन फिर भी हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को हम एक विशेष दिन मनाते हैं उन्हें याद करने के लिए, जैसा कि आज मना रहे हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने की थी, लेकिन 1900 के दशक में अन्ना जार्विस नामक एक बेटी ने इस दिवस को मनाने की वकालत की, क्योंकि उनकी मां ने अपना पूरा जीवन महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा आदि के लिए समर्पित कर दिया था। तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। हम अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी माँ का सम्मान करें, उन्हें प्रेम करें और उनका आदर करें। सभी श्रोताओं को आज होने वाले इस मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

माँ की भक्ति से परिपूर्ण ये गीत हमने आपको सुनवाया और सभी माताओं को उनके बच्चों की तरफ से ये गीत हमने समर्पित करने के लिए आज आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित किया। मातृ दिवस के मौके पर एक बार फिर सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई उनके बच्चों से भी हम ये कहना चाहेंगे, वो कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, है ना, कि वो हमेशा जब तक उनकी माँ है सम्मान करना सीखें, सम्मान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम है ल्यूपस, यानी विश्व ल्यूपस दिवस की। यूं तो देश दुनिया में अनेक तरह की बीमारियों से जनमानस पीड़ित हैं, लेकिन अगर हम किसी भी बीमारी के प्रति जागरूक और सचेत रहें तो शायद हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकें।

श्रोताओं, एक बीमारी जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो का नाम है ल्यूपस। जी हाँ, ये एक गंभीर पुरानी और ऑटो इम्यून को प्रभावित करने वाली बीमारी है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता गलती से शरीर के स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर प्रभाव डालने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन, जोड़ों में दर्द दर्द, त्वचा, किडनी, रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का संतुलन संक्रमण से ग्रसित हो जाता है, या ये कहें ये संक्रमित हो जाते हैं। यूं तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में अधिक आम मानी गई है। इस ल्यूपस नामक बीमारी के बारे में जनमानस को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए ही हर साल की 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस को मनाने की थीम है ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। श्रोताओं, विश्व ल्यूपस दिवस हम सबको ये भी याद दिलाता है कि बेहतर जागरूकता, शीघ्र इलाज, निगरानी यानी मॉनिटर करना और जीवन को सही तरीके से जीना ही अपने आप को इस बीमारी से दूर कर सकता है। तो ये बात हुई विश्व ल्यूपस दिवस की। और अब नजर डाल लेते हैं बीते वर्षों की, जो 10 मई रही है, उनकी प्रमुख घटनाओं की। तो 10 मई सन 1857 में मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला था। और ये वही क्रांति है जिसका हमने आपसे सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में जिक्र किया था सबसे पहले, यानी 1857 ईस्वी की महान क्रांति का आरंभ। 10 मई सन 1993 में संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी। 10 मई सन 1929 को भारतीय संविधान के विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म जिला बिजनौर के चांदपुर में हुआ। वे 1984 से 1990 तक लोकसभा सचिवालय के महासचिव रहे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और आधारशिला बताया। 10 मई सन 2002 को फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर, कवि, गीतकार कैफी आजमी का निधन हुआ। उन्होंने 11 साल की उम्र से शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनेक भारतीय फिल्मों के यादगार गीत लिखे। उनकी शायरी में प्रेम, समाजवाद और मानवता के प्रति गहरा लगाव नजर आता है। उन्होंने हकीकत, कागज के फूल, आखिरी खत, अनुपमा, हीर रांझा आदि जैसी फिल्मों के गीत लिखे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। आपको सुनवाते हैं उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ बने हुए हैं मनोज वर्मा। एक बार फिर हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत करते हैं और अब हम आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस की, जिसे हम आज मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये दिवस हर साल 10 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये भी बता दें अर्गानिया एक पेड़ का नाम है जो मुख्य रूप से मोरक्को में पाया जाता है और इसमें कांटे पाए जाते हैं। इसे हिंदी में आर्गन का पेड़ भी कहा जाता है। इससे निकलने वाले तेल और मिलने वाले फल के कारण ही इसे तरल सोना यानी लिक्विड गोल्ड देने वाला वृक्ष भी कहा जाता है। इसके तेल में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बहुत लाभदायक माने गए हैं। श्रोताओं, इस अर्गानिया या आर्गन के पेड़ की विशेषताओं को बताने के लिए ही हर साल की 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की एक मुख्य वजह ये भी है कि अर्गानिया या आर्गन के पेड़ की विरासत को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस बहुमूल्य पेड़ का अस्तित्व बना रहे और इसके फायदे सभी को मिलते रहे। ये बात हुई अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। और अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की अहम सुर्खियों की तरफ भी। तो विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में के मौजूदा चैंपियन साहिल जाघव ने बीते कल तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये विश्व कप में उनका पहला पदक है। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आईपीएल के रोमांच के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई खिलाड़ियों की गतिविधियों पर भी सख्ती बरतने की तैयारी में है। बीसीसीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार खास तौर पर रील बाज खिलाड़ियों को लेकर आईपीएल की टीमों ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी अपनी निजी रील या वीडियो बनाकर तुरंत इंटरनेट वीडियो पर मीडिया पर साझा नहीं कर सकते। तो ये दोनों अहम सुर्खियां थीं दैनिक जागरण। बात की जाए हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाली इन सुर्खियों की, तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ आज दस्तक देने की तैयारी में है। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा लेकिन देर से पड़ेगा। ऊपरी क्षोभ मंडल से गुजरने के से बादलों की आवाजाही रहेगी। इससे तराई के जिलों में हल्की बौछार या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय रेल अत्याधुनिक तकनीक क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी के तहत रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस को अगली पीढ़ी का बनाने जा रहा है। इससे व्यस्त सीजन और घंटों में रेलवे की वेबसाइट और ऐप धीमे नहीं होंगे। ऐसे में तत्काल टिकट सुपरफास्ट गति से बुक होंगे। ये दोनों अहम सुर्खियां थी हिंदुस्तान की। बात करें अमर उजाला में प्रकाशित होने वाली इन सुर्खियों की, तो पाकिस्तान और चीन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि सेवानिवृत्त हैं। आप देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि देश के सबसे वरिष्ठ सैन्य कमांडर के तौर पर 30 मई को मौजूदा जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। इसके अलावा युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। विद्यालय, पुलिस प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग मिलकर नियम का सख्ती से पालन करें, यानी स्कूल कॉलेजों से अब दूर होगा नशा, 500 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद। तो ये अहम सुर्खियां थी अमर उजाला से। अब एक संदेश आपको और सुनवाते हैं, उसके बाद फिर गीत की बारी है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
5: टीवी के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
7: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
6: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: आपके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
10: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
11: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
6: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
12: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
6: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
13: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
6: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
14: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता, टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी

0: ये जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं, लड़ना भी सिखाना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Center operationalizes 4 labor codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honored with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care, not-for-profit hospital. founder

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उर्दू शायर, कवि और गीतकार कैफी आजमी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत।

0: शोला और शबनम फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम हीर रांझा।

0: आइए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना।

0: करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कैफी आजमी के लिखे हुए कुछ फिल्मी गीत।

और गोल्डन हिट्स आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। यूं तो बहुत गीत हैं कैफी आजमी साहब के लिखे हुए, कुछ नज्म भी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत होती है, आधे घंटे में हमें ये काम करना है तो थोड़ा मजबूरी भी होती है। लेकिन और गाहे बगाहे रोज कहीं ना कहीं से आकाशवाणी नजीबाबाद हो या और भी स्टेशंस हैं तो वहां से कोई ना कोई गीत तो प्रसारित होता ही रहता है ना। चलिए एक गीत आपको और सुनवाते हैं।

आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना दो दिल फिल्म का ये गीत, और एक गीत आपको और सुनवाएंगे अभी हम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हकीकत, और ये गीत भी कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा हुआ है, ज़रा सुनिएगा।

0: कैफी आजमी की लिखी इस रचना के साथ, जिसका फिल्म का नाम था हकीकत, आज का गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आज का गोल्डन हिट समर्पित था गीतकार कैफी आजमी साहब को। 9:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में सामयिक चर्चा हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
4: धन्यवाद ओम जी।
3: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
4: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं। और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण, जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का, उसका कार्य संपन्न किया जाना है। और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है, बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं, तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर, जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं, वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है। और उसको एक यूनिक कोड, उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद, आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
3: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
4: हम लोगों ने 3 जनपदों में, जिसमें से 2 जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहीपुरवा, वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था, तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था, बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या

0: ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को यह सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है, सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
1: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
0: मैं आपके प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है, तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया हैं। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद, जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उनकी भी गणना की जाती है और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
0: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टैटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी भी दशा में किसी के भी पूछने पर, आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पांस दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं।
1: जी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखते हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है, वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कम्प्लीट करे। तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोगों के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
1: जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा दो स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वगणना अधिक से अधिक लोग करें क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए, तो स्वगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर निगमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे, अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे, और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे, और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ के
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पुष्पा रानी और शशिकला राजपूत के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। पहले सुनते हैं ये रुहेलखंडी लोकगीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: लीजिए अब सुनिए शशिकला राजपूत की आवाज में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

पुष्पा रानी की आवाज में आपने सुना ये रोहिलखंडी लोकगीत। धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा रानी और शशिकला राजपूत के गाए कुछ रोहिलखंडी लोकगीत। पेश है शशिकला राजपूत की आवाज में आज के इस कार्यक्रम का अंतिम रोहिलखंडी लोकगीत।

धरती गाती है कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपने पुष्पा रानी और शशिकला राजपूत के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत सुने। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।

श्रोताओं नमस्कार, बात आसपास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त धीरेंद्र धारीवाल। आज फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं मातृ दिवस और हमारा आज का कार्यक्रम भी मातृ दिवस पर ही आधारित है। माँ ये केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, ममता और संस्कारों का अद्भुत स्वरूप है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कठिनाई सहन कर लेती है। बच्चे के जन्म से लेकर उसके जीवन के हर मोड़ तक माँ उसका मार्गदर्शन करती है, उसे सही और गलत का ज्ञान देती है और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती है। मातृ दिवस हमें अपनी माँ के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो माँ को भगवान से भी बढ़कर माना गया है।

0: दोस्तों, मातृ दिवस क्या है और इसका क्या महत्व है, इस संबंध में हमने बात की शिक्षिका श्रीमती शोभा जी से।
1: मेरा नाम शोभा रानी है और मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ।
0: तो मैम, ये जो माँ बनने का एहसास है, ये एक डिफरेंट रिलेशन होता है, आपका इसके बारे में क्या कहना है?
1: एक तो नया जीवन देती है दूसरे को, तो इसलिए वो एहसास बिल्कुल अलग है। बाकी रिश्तों में हम शुरू से ही बंधे होते हैं
0: जी,
1: लेकिन वो एहसास जब वो पहली बार महसूस करती है उसको, तो उसको तो शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है।
0: जब आप स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, तो क्या कभी किसी बच्चे की शरारत या उसकी मासूमियत को देखकर अपने घर पर छोड़े हुए बच्चों की याद आती है आपको?
1: बिल्कुल आती है, उनका हंसना बोलना। कभी कभी वो बच्चे ऐसी ऐसी बात कर देते हैं कि हाँ, जो बात हम बच्चों से अपने बच्चों से फील करते हैं, तो वही बात हमें अधिकतर मिलती है। छोटे बच्चे होते हैं हमारे, जैसे घर से आते हैं तो वो बात बात में कभी कभी मैडम की जगह मम्मी भी बोल देते हैं।
0: जी, कहते हैं माँ का दिल सबके लिए बराबर होता है, एक टीचर होने के नाते आप अपने घर के बच्चों और स्कूल के बच्चों के बीच अपनी ममता को कैसे बांटती हैं?
1: जैसे हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम इन बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। जहाँ हमें टीचर बनना है, जहाँ हमें उन्हें कुछ सिखाना है
0: जी,
1: ठीक है, वहाँ हम एक टीचर की तरह है। लेकिन जिस वे में अगर एक माँ ज्यादा बेटर समझा सकती है, क्योंकि माँ एक अच्छी शिक्षिका होती है, चाहे किसी भी परिवार की बात ली जाए, चाहे कुछ भी हो, हम शिक्षक होने से पहले एक माँ है और माँ ही सबसे बड़ी शिक्षिका होती है हर बच्चे के लिए।
0: कभी ऐसा पल आया जब आपका अपना बच्चा घर पर बीमार हो, लेकिन स्कूल में कोई एग्जाम या कोई जरूरी काम, उस दिन एक माँ और एक टीचर के बीच जो कश्मकश होती है, उसके बारे में बताइए।
1: जी, आया है। मैंने पिछली बार अपने बेटे का ऑपरेशन कराया था
0: जी,
1: तो इसलिए मेरे को लगातार स्कूल भी आना हुआ। उस टाइम थोड़ा कश्मकश होती है, क्योंकि हर टाइम पढ़ाते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी, कि शायद एक माँ जितना बेटर अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है। वैसे तो घर में और हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे का और माँ का जो बॉन्ड होता है, वो शायद और किसी रिश्ते में मैं नहीं समझती हूँ कि इतना हो।
0: आज इस मंच से उन सभी वर्किंग मदर्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो रोजाना अपने बच्चों और अपने करियर के बीच एक साइलेंट वॉरियर की तरह लड़ रही हैं?
1: इसमें मैं उन सभी माओं, जो चाहे वर्किंग वूमन हूँ या एक हाउस वाइफ हूँ, माएँ तो माँ होती है, जिम्मेदारियाँ चुनौतियाँ उसके सामने होती हैं, तो उन सभी माओं के लिए मैं बस केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, एक नए समाज की नींव रख रहे हैं, तो उनमें कुछ आदर्शों को लेकर हम लगातार यही उनमें सोच विकसित करें कि इस समाज को जिस तरह से आगे हमें बढ़ाना है, जैसे हम आगे बढ़े हैं, वैसे ही उनमें इस तरह के आचार विचार, उनके व्यवहार में ऐसे ही परिवर्तन लाएं, और उन्हें प्यार भी दिया जाए, और प्यार के साथ साथ उन्हें जो आदर्श हैं हमारे, जो नैतिक मूल्य हैं, वे भी कहीं ना कहीं छूटने नहीं चाहिए।
0: बच्चे अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं और मातृ दिवस को किस रूप से मनाते हैं, इस संबंध में आप कुछ बच्चों से भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: Myself प्रेरणा चौहान।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
2: In 8th standard, school Gurukul International Academy।
0: तो बेटा, आपकी नज़र में माँ का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ घर संभालती हैं या आपके लिए एक टीचर और एक दोस्त भी हैं?
2: मेरे लिए एक टीचर और दोस्त भी है। मम्मी ही हमारे लिए सब कुछ है और उनसे हम बहुत सारी चीजें नई भी सीखते हैं।
0: सुबह आपके उठने से पहले मम्मी उठ जाती है और रात को सबके सोने के बाद, सब काम निपटाने के बाद सोती हैं। तो क्या आपने उनके इस अनपेड जॉब के बारे में सोचा है कभी? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: वो जो भी करती है हमारे लिए करती है, हमारी फैमिली के लिए करती है, सुबह से लेके शाम तक मेहनत।
0: हमें स्कूल में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, पर ऐसी वो कौन सी बात है जो आपने सिर्फ अपनी मम्मी से सीखी है और वो हमेशा काम आती है?
2: दूसरों की रिस्पेक्ट देना, और अगर हम कहीं पे मुसीबत में हो, फंस जाए, हर इसी को ठीक से फेस करना।
0: हम सब मम्मी को बताते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, तो क्या आपको पता है कि आपकी मम्मी क्या बनाना चाहती हैं आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं।
0: आप उनका कहना मानते हो?
2: हाँ, मानती हूँ।
0: जब स्कूल में या दोस्तों के बीच आप कभी परेशान होते हो, मम्मी आपको कैसे हौसला देती है?
2: मम्मी कहती है कि अगर कहीं पे भी मुसीबत हो तो हॉपलेस नहीं होना है, समझदारी के साथ काम लेना है।
0: हम सबकी माँ हमारा खाना पीना देखती है, पूरा ध्यान रखती है, सेहत का ध्यान रखती है, तो आप एक बेटी होने के नाते उनका कैसे ध्यान रखती हैं जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है या कोई ऐसी चीज हो घर में जहाँ मम्मी काम नहीं कर पाए?
2: जब संडे होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा मम्मी की हेल्प भी करती हूँ, और जब मम्मी बीमार होती है तो भी मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ।
0: आप 8th क्लास में हो, बड़े हो गए हो अब
2: जी,
0: घर के कामों में मम्मी का हाथ कैसे बढ़ाते हो कि ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके?
2: जैसे लाइक आटा मल देना, झाड़ू मार देना और पोछा मार देना।
0: तो ये सब काम आपसे मम्मी कहती है करने को या आप खुद से करते हो?
2: खुद से करते हैं।
0: अगर आपको आपकी मम्मी के लिए कुछ कहना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ, मम्मी के लिए एक मैं प्यारी सुंदर सी कविता बोलना चाहूंगी
0: जी, सुनाओ।
2: माँ की ममता का कोई

0: अंत नहीं होता, उसकी आंचल से प्यारा कोई बसंत नहीं होता। सुबह की पहली किरण में तेरी मुस्कान है, मेरी हर दुख की तू ही एकमात्र समाधान है। थक कर जब मैं घर लौटूं, तेरी गोद में ही सुकून पाऊं, उंगली पकड़कर चलना सिखाया तूने, सही और गलत का भेद बताया तूने, मेरे लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है, बिन कहे ही दिल की हर बात समझ जाती है, दुनिया की हर खुशी तेरे चरणों में, तू सलामत रहे ये दुआ मेरी है। हैप्पी मदर्स डे।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रियांशी।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
2: मैं थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ। माय स्कूल नेम इज ग्रीनफील्ड चिल्ड्रन स्कूल।
1: आपकी मम्मी आपको प्यार से किस नाम से बुलाती है?
2: मुझे पलक बुलाते हैं प्यार से।
1: तो जब आप कोई शरारत करते हो और मम्मी आपको डांट देती है, उसके बाद आप मम्मी को जब गुस्सा कर देती है, तो उनको कैसे मनाते हो?
2: प्यार से मनाते हैं।
1: आपकी मम्मी आपके लिए सबसे टेस्टी चीज कौन सी बनाती है?
2: भिंडी।
1: आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मी के बारे में?
2: मेरी मम्मी ने मुझे एक पोयम सुनाई थी, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसे है व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को।
1: बहुत अच्छा, थैंक यू। दोस्तों, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके सर से माँ बाप का साया बहुत जल्दी उठ जाता है। उन बच्चों की परवरिश किस प्रकार से की जाती है, इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे नजीबाबाद के करुणाधाम आश्रम में, जहां पर हम मिले एक केयर टेकर से। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम है ज्योति मसीह।
1: आप यहां करुणाधाम में कब से कार्य कर रहे हैं?
3: मैं 2025 सितंबर से कर रही हूं।
1: तो जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सर पे उनके माता पिता का हाथ नहीं है, तो इन बच्चों के पालने के लिए सबसे बड़ी भावनात्मक चुनौती आपको क्या आती है?
3: एक क्लियर ख्याल किया जाता है, क्योंकि इनको खाना सुबह उठते ही पहले इनको लिए 6 बजे हम लोग नहलाने के लिए तैयारी इनको करते हैं, इनको कपड़ा और साबुन से पोल देते हैं, फिर नहलाते हैं, फिर उसके बाद तेल कंघी लगाते हैं, साफ सफाई करने के बाद फिर हम लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करने के बाद इनको 8 बजे नाश्ता दिया जाता है।
1: तो आप इनकी जो केयर करती हैं वो एक माँ की तरह करती हैं, तो ये जो फीलिंग है वो उसके बारे में बताइए आप।
3: मेरी ख्वाहिश रहती है कि मैं इनकी मदद कर सकूं, तो जब मैं इनके साथ रहती हूं तो मुझे अपनापन लगता है, लगता है ये मेरी छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मुझे खेलना, वो भी मेरे साथ खेलती हैं, उनको नहलाना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने खून के रिश्ता कोई नहीं है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनों से भी बढ़कर मुझे इनके साथ अच्छा लगता है काम करने में।
1: आप यहाँ जितने टाइम से काम कर रही हैं, तो आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे की आंखों में उसके माँ की तलाश?
3: वैसे सिस्टर लोग भी उनको माँ के समान प्यार करती हैं, उनको जितना खुश करने की भी चाहती हूँ। अगर वो लोग जो भी कहे कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये पहनना है, और दिन में कई बार वो लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो जो मांगती हैं, यानी सिस्टर इतना उनका केयर करती, इतना प्यार करती हैं कि उनको कभी अपनी माँ की महसूस नहीं होने देते। फिर भी वो लोग कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग अपने घर की याद करती हैं तो चिंता में हो जाती हैं और परेशान में रहती हैं।
1: तो समाज को आप मदर्स डे पे क्या सीख देना चाहेंगे?
3: समाज को हम यही सीख देना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं सबकी उनको हमें मदद करना चाहिए, सब समाज को हेल्प करना चाहिए, और एक माँ के जैसे जो इनकी ख्वाहिश है ये बोल रहे कि मुझे ये पनीर खाना है, तो एक माँ के जैसे उनको पनीर बना करके दिया जाता है, माँ के जैसे यहाँ पे सिस्टर लोग ध्यान करती हैं।
1: तो आइए इस मातृ दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपनी माँ का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और जीवन भर उनका आदर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का बात आसपास की कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे धीरेन्द्र धारीवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर।

0: रेडियो की धुन में वो पुराना प्यार मिलता है। रेडियो की धुन में वो पुराना प्यार मिलता है। हर आवाज में दिल को सुकून यार मिलता है। दूर होकर भी सबको पास ले आता है। दूर होकर भी सबको पास ले आता है। जी हाँ, रेडियो हर पल को खास बना जाता है। श्रोताओं, रेडियो के साथ आपका और हमारा प्यार भी पुराना है। आज आवाज की इस दुनिया के कारण ही आप हमें प्यार करते हैं और हम आपको।
1: बिल्कुल सही कहा, फासलों को कम करने में रेडियो का कोई जवाब नहीं है। इसमें बजते तराने दूरियों को कम कर देते हैं।
0: इसीलिए आकाशवाणी यानी रेडियो हम सभी के दिलों के बहुत करीब है। और रेडियो पर हमारा आज का सुहाना सफर कार्यक्रम अब शुरू करते हैं।
1: और आज के इस सफर में हम बात करेंगे साल 2018 के सुहाने सफर की।
0: तो श्रोताओं, आज के इस सुहाना सफर कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हम सफर ज्योति गौड़, और
1: मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: ज्योति, कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया और श्रोताओं को बता भी दिया कि आज हम बात करेंगे साल 2018 के सुहाने सफर की, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले क्यों ना एक गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, और ये गीत हमारे सभी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम का पहला गीत,
1: और ये गीत जो रहेगा ना, जो हम आपको सुनवाने के लिए जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सोनू की टीटू की स्वीटी। 2018 में ये फिल्म बनी थी। अरिजीत सिंह की आवाज है इस गीत में। कुमार का ये गीत लिखा हुआ है और इसमें जो धुन तैयार की गई है इस गीत के लिए अमाल मलिक की है। सुनवा दें।
0: बिल्कुल।
2: Thank you.

0: कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर और आज के इस सफर में हम बात कर रहे हैं साल 2018 के सफर की। तो मनोज जी, गाना तो हमने श्रोताओं को सुनवा दिया, कार्यक्रम की शुरुआत करें हम। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए आइए अब बात करते हैं सन 2018 के सफर की। सन 2018 में रेडियो पर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय घटनाओं का प्रसारण किया गया। रेडियो ने लोगों तक तेजी से जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: जैसे 26 जनवरी 2018 को देश भर में गणतंत्र दिवस की परेड, राष्ट्रपति का संबोधन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण रेडियो के जरिए किया गया, जिससे देशभक्ति की भावना मजबूत हुई थी।
0: जी हाँ श्रोताओं, 15 अगस्त 2018 को नरेंद्र मोदी जी के लाल किले से दिए गए भाषण का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और एफएम चैनलों से हुआ।
1: सन 2018 में केरला में आई भीषण बाढ़ की खबरें, राहत काम और सरकारी घोषणाएं रेडियो द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही थी। इससे लोगों को सहायता और जागरूकता मिली थी।
0: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए उपग्रह प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष अनुसंधानों की जानकारी रेडियो समाचारों में प्रमुखता से दी गई।
1: इसके अलावा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह से जुड़ी गतिविधियों और स्वच्छता अभियानों का प्रचार प्रसार भी रेडियो के माध्यम से किया गया।
0: और मनोज जी, स्वच्छ भारत मिशन को तो हम सभी जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कार्यक्रम, जागरूकता संदेश और विशेष चर्चाएं रेडियो पर प्रसारित की गईं।
1: रेडियो पर किसानों के लिए मौसम, खेती, सरकारी योजनाएं और आधुनिक कृषि तकनीकों से संबंधित कार्यक्रम नियमित रूप से सुनाए गए थे।
0: और 2018 में रेडियो श्रोताओं केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि सूचना, शिक्षा और जागरूकता का एक मजबूत माध्यम बना रहा। ऐतिहासिक घटनाओं, खेल विज्ञान और सामाजिक अभियानों को जन जन तक पहुंचाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक और गीत सुनवा दें।
1: सुनवा दिया जाएगा ये गीत भी, और अर्णब दत्ता की आवाज में ये गीत रहेगा। फिल्म का नाम है 1921, शकील आजमी के बोल हैं और हरीश सगाने का इसमें संगीत है।

0: अर्णव दत्ता की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना फिल्म 1921 से।
1: और ज्योति सन 2018 में रेडियो पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा था। खेल प्रेमियों के लिए रेडियो आज भी तेज और विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। उस वर्ष क्रिकेट, फुटबॉल, एशियन गेम्स और अन्य खेलों से जुड़ी खबरें, कमेंट्री और विशेष कार्यक्रम खूब प्रसारित किए जा रहे थे।
0: और मनोज जी, सन 2018 एशियन गेम्स का प्रसारण रेडियो पर विशेष रूप से किया गया। भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों, पदकों और मुकाबलों की जानकारी लगातार रेडियो से दी गई।
1: 2018 फीफा वर्ल्ड कप के मैचों की लाइव अपडेट, स्कोर और विश्लेषण रेडियो पर सुनाए गए। फुटबॉल प्रेमियों ने इसे काफी पसंद किया था।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय मैचों, वनडे, टेस्ट और T20 मुकाबलों की कमेंट्री रेडियो पर प्रसारित हुई। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चाएं विशेष रूप से होती थी।
1: इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, IPL के मैचों का अपडेट, टीमों की स्थिति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी भी रेडियो चैनलों पर दी जाती रही थी।
0: 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों और मुकाबलों का रेडियो पर विस्तृत प्रसारण हुआ।
1: भारत के पारंपरिक खेलों जैसे कबड्डी और कुश्ती से जुड़े राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की खबरें और विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे थे।
0: जी हाँ, और भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की जानकारी और विश्लेषण रेडियो समाचारों में शामिल रहे।
1: इसके अलावा रेडियो पर खिलाड़ियों के इंटरव्यू, खेल विशेषज्ञों की राय और युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने वाले कार्यक्रम भी खूब प्रसारित किए गए।
0: जी हाँ, खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में व्यायाम, योग और स्वस्थ जीवन शैली पर चर्चाएं भी की गई। मनोज जी, कार्यक्रम में अभी और भी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
1: बिल्कुल, समय है इस गीत का जो अपने श्रोताओं को हम सुनवाएंगे। फिल्म का नाम है बागी 2 और जुबिन नौटियाल की आवाज है। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा है और मिथुन का संगीत है। तो लीजिए, सुनिएगा ये गीत।

0: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर। आज के इस सफर में मैं हूं आपके साथ ज्योति गौड़,
1: और मैं हूं मनोज वर्मा।
0: और आज हम बात कर रहे हैं साल 2018 के सफर की।
1: तो सन 2018 में रेडियो पर अनेक संगीत गतिविधियों का प्रसारण किया जा रहा था। रेडियो उस समय भी मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम था, जहां पुराने और नए गीतों, विशेष संगीत कार्यक्रमों और कलाकारों से जुड़ी जानकारियों को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता था।
0: जी हां, 2018 में नई फिल्मों के लोकप्रिय गीत रेडियो पर खूब सुनाए गए। दिलबर, आंख मारे और तेरा फितूर जैसे गाने श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे।
1: रेडियो चैनलों पर पुराने फिल्मी गीतों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते थे, जिसमें 60s, 70s और 80s के सुपरहिट गाने सुनवाए जाते थे।
0: फरमाइशी गीत जैसे कार्यक्रमों में श्रोताओं की पसंद के गाने बजाए जाते थे। लोग फोन कॉल, संदेश और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पसंदीदा गीतों की मांग करते थे, जो आज भी करते हैं ना।
1: बिल्कुल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दीपावली, होली जैसे अवसरों पर विशेष देशभक्ति और उत्सव गीत प्रसारित किए गए।
0: 2018 में कई बड़ी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों ने मनोरंजन, एक्शन, कॉमेडी और सामाजिक संदेशों के माध्यम से दर्शकों का खूब दिल जीता, और हम भी अपने श्रोताओं को आगे लिए चलते हैं कार्यक्रम में। एक और गीत सुनवा देते हैं उनके मनोरंजन के लिए।
1: ये गीत है फिल्म रेस 3 से अमित मिश्रा और उनके साथियों की आवाजों में। शब्बीर अहमद ने इस गीत को लिखा है और तुषार जोशी का इसमें संगीत है।

0: श्रोता हूँ, 2018 में पद्मावत, राजे, संजू, अंधाधुन, बधाई हो, स्त्री, सिम्बा, जीरो, गोल्ड, हिचकी जैसी फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और 2018 बॉलीवुड के लिए एक शानदार वर्ष भी रहा।
1: और गीत संगीत की बात रेडियो पर ना हो और रेडियो का इसमें विशेष प्रसारित कार्यक्रम की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुबह और शाम के समय भजन, आरती, सूफी संगीत और धार्मिक गीतों का प्रसारण नियमित रूप से रेडियो से होता रहा, जो आज भी लगातार हो रहा है।
0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अरिजीत सिंह जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे।
1: और श्रोताओं, FM रेडियो चैनलों पर RJ द्वारा मनोरंजक बातचीत, संगीत क्विज और नए गीतों की जानकारी दी जाती थी, जिससे कार्यक्रम और भी रोचक बनते थे।
0: 2018 में कई रेडियो चैनलों ने नए गायकों और इंडी म्यूजिक को भी मंच दिया, जिससे युवा कलाकारों को एक विशेष पहचान मिली थी।
1: कॉन्सर्ट, संगीत समारोह और सांस्कृतिक आयोजनों की खबरें और विशेष चर्चाएं रेडियो पर प्रसारित होती थी।
0: 2018 में रेडियो पर प्रसारित फिल्म संगीत कार्यक्रमों ने श्रोताओं को भरपूर मनोरंजन दिया। पुराने और नए गीतों के सुंदर मेल ने रेडियो को हर आयु वर्ग के गानों के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा। और अब एक गीत हम आपको और सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है राजी, सुनिधि चौहान की आवाज है और ये एक दुआ है
1: और गीत कार्यक्रम का अंतिम है।

0: इस कार्यक्रम की बातों को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर इसी समय उपस्थित होंगे कार्यक्रम सुहाना सफर लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति गौड़
1: और ज्योति के साथ मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर का आज का अंक, जिसमें आज हमने आपसे बात की सन 2018 के रेडियो के सुहाने सफर की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी मनोज वर्मा और मेरे साथ मेरी साथी
1: ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार।
0: तो स्वीकार करिएगा हम दोनों का नमस्कार। आज के इस अंक में सिलसिला वही रहेगा, आपके SMS को और खतों को पढ़ेंगे और सुनवाएंगे आप ही की पसंद के कुछ गीत। तो बने रहिएगा आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और इस वक्त हम जुड़े हैं आपसे ज्योति। इससे पहले कि हम श्रोताओं के SMS पढ़ें, जरा नंबर बताओ जिस पर हमारे नए श्रोता और व्हाट्सअप कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने नाम भेज सकते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं।
0: और अगर हिंदी में इस नंबर को बोला जाए तो 9455778288, ये हमारा नंबर है। इस पर आप हमें अपनी पसंद का गीत लिख सकते हैं, फिल्म का नाम लिख सकते हैं, गाने के बोल लिख सकते हैं और अपने नामों को लिख सकते हैं। और हाँ, कोशिश करें कि दोबारा आप SMS ना करें हमें, अगर हम आपके SMS को पढ़ देते हैं तो ज़रा सा एक ये सामंजस्य भी बनाकर रखिएगा। धन्यवाद सहित शुरुआत करिएगा ज्योति।
1: बिल्कुल। और कार्यक्रम में हमारा पहला SMS यानी कि WhatsApp संदेश हम पढ़ लेते हैं, जो आया है परी महल कासगंज से। भेजने वाले हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, एम असलम, सैफी इल्मा खान और मास्टर जहीद खान। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें मिला है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगपात। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, MD यासीन, शेख चांद, शेख सलीम, शेख फारूक और मूसा करीम। और इसी गीत के लिए हमारे पास ये अगली फरमाइश आई है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद।
0: ये मैसेज हमें मिल रहा है नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी के अलावा हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी मोहल्ला हलवाईन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना वारसी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी नियमित श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नहाटा, दीक्षा और कुश मूड़त भी जुड़े हुए हैं इनके साथ। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे आप भी श्रोता हैं। ये मैसेज मुझे मिला है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन, निशात बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा का। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं ओल्ड लिसनर्स ग्रुप मगनपुर।

0: झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लडली, बेबी निशा और उनके घर के सभी सदस्य। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, हमारे नियमित श्रोता, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनका पूरा परिवार, ज्योति आगे एसएमएस पढ़ें।
1: और ये हमारे पास कार्यक्रम का अगला मैसेज आया है। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत का इसी गीत को सुनना चाहते हैं। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से ये हम पढ़ चुके हैं। हम अपने श्रोताओं से फिर से कहना चाहेंगे, मनोज वर्मा जी ने भी कहा था कि जिनके मैसेज शामिल हो जाएं वो हमें फिर से मैसेज ना करें, और आप हमें फिर से मैसेज ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिन श्रोताओं के नाम रह जाते हैं वो इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि कई श्रोताओं के हमारे पास डबल डबल मैसेज आते
0: और
1: हैं।
0: इतनी बात कहने में भी हमारा वक्त जाया होता है, और जाया होने का मतलब है कि भाई आप ही के एसएमएस रुक रहे हैं।
1: बिल्कुल, इसीलिए हम आप श्रोताओं से कहना चाहते
0: थोड़ी
1: हैं
0: सी
1: कि
0: बात जोड़ दी थी हमने।
1: जी बिल्कुल। और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें मिला है ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का।
0: इसके अलावा भाई देखिए हमारे जो श्रोता है ना लगातार जुड़े हुए हैं, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा, बबीता, शोभा, नंदिनी, ललित और भाऊ खड़ से, आराध्या खड़ से हमें भेज रहे हैं मैसेज ये। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी, सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रविश अहमद राही, रुएश, रिशान, रुशेज, रुशमान और समस्त राही परिवार हमेशा से ही जुड़ते आ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता हमें बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और इनके साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। सुनिएगा आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म का ये गीत, और अब ये संदेश, उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें कुछ खतों को शामिल करेंगे। और अपने श्रोताओं से हम बता दें कि खत तो हमारे श्रोता लिखते ही हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं पीले रंग के, लेकिन हमारे श्रोता ऐसे भी हैं जो एनवलप में बाकायदा एक कागज़ रख के भेजते हैं कि भाई, और बाकायदा टिकट लगे हुए होते हैं, जो पूरे सरकारी जो होता है वो टिकट लगा हुआ होता है। तो वो हम खोल रहे हैं इस वक्त, भाई आपको नज़र तो नहीं आएगा लेकिन हम आपको सारा वृत्तांत बता रहे हैं। तो ये हमारे नियमित श्रोता हैं जिन्होंने ये हमें इस फॉर्म में ये खत भेजा है। एहसान अली सिर्फ एक ही नाम है और बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका इस खत के लिए। इसके अलावा ये खत मैं ले रहा हूँ तेलीपुरा रवाना शिकारपुर तलाई से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, उमेर अंसारी। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये खत है मेरे हाथ में रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर का, जसपुर उत्तराखंड से। हमारे नियमित श्रोता हैं नरेंद्र कुमार, मंजू शर्मा, एकता शर्मा, पंडित जगन्नाथ शर्मा और इनका पूरा परिवार जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के। ये खत है मेरे हाथ में शाही मार्केट सिहोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, आराफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी और ज्योति। एसएमएस लो थोड़े से।
3: और ये हमारे पास मैसेज आया है मारहरा दरवाजा एटा से, भेजने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रईस वारसी, अमन अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी। और इसी कार्यक्रम के लिए अगला मैसेज हमें आया है गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली का, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना, आरिज नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइश की है कुआत बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर सह का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं दाऊसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ संसारी का।
2: इसके अलावा कुछ खत और ले रहे हैं हम ग्राम जुझैला थाना शिवाला कलां बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी। ग्राम लुहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र और इनका पूरा परिवार। कस्बा मीरगंज बरेली से भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन और इनका पूरा परिवार। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक के अलावा इसी गीत को खत के जरिए सुनना चाहते हैं। सहारनपुर दाऊद सराय से हमारे श्रोता अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी और दूल्हापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और इनके परिवार के पूरे सदस्य, मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर जन्नत और इनका पूरा परिवार। कुछ एसएमएस और लो ज्योति।
3: ये हमारे पास मैसेज आया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बाडोना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगपात। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गणेशपुर गंजडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सर सराफ शेख, गुल फराज शेख और बेबी मुस्कान। इसी गीत के लिए ये हमें मैसेज भेजा है बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू।
2: लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: मोहल्ला नादे हिंद नजीबा बा से कुलदीप माहेश्वरी मंजुला माहेश्वरी दीपांशु माहेश्वरी पलक माहेश्वरी चिराग माहेश्वरी और रुद्र माहेश्वरी। सब्जी मंडी नजीबा बा से आप हैं विष्णु अग्रवाल रानी अग्रवाल निकित अग्रवाल सोनी अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल के साथ पूरा परिवार। ज्योति आगे के मैसेज लो।
1: मैसेज हमारे पास आया है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा पवन आजम चंद्र मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डिग्गू भाविक सिक्का और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी नुसरत बेगम एजाद कुरैशी अकील कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा का।
0: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं जिला सिरसा हरियाणा गांव खारिया ढाणी से सत्यवीर सिंह बिजारनिया देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा आरजू नव्या और इनका पूरा परिवार इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं। कुंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता आप भी हैं। ये हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। के अलावा भाई ये मैसेज और मिल रहा है हमें वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करोला मुरादाबाद से अयूब खां इरम गुड़िया शुएब खान भी इनके साथ जुड़े हुए हैं भाई हमारे श्रोता हैं। और ये मैसेज मुझे और नजर आ रहा है नजर तो बहुत मैसेज हैं इस वक्त हमारे पास में। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव कुणाल यादव हर्ष यादव मनीष यादव अंशिका यादव यूनुस खान और सोफिया खान। सुनिएगा अपनी पसंद का ये अंतिम गीत।

ये जो गीत आप सुन रहे हैं ना, ये गीत है कुमार सानू की आवाज में दिल का क्या कसूर फिल्म से, और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। आज रविवार का दिन है और हमारे श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं, तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है इसी गीत के लिए। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। सो जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े के अलावा भाई ये मैसेज और अंतिम मैसेज है इस गीत का। ये मैसेज

है शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, वली भाई कुशवाहा, रेशमा और राज एसडी कुशवाहा का, साथ में इनके एसके नारंग भी हैं, दौलत डुमराव, भाई पूरा नाम पढ़े तो डुमराव से है।

0: और इस गीत के साथ इस कार्यक्रम से मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। कार्यक्रम आपका पत्र मिला में एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। एसएमएस के लिए तैयार रहें और जो भी आपके फीडबैक हैं आप हमें लिख सकते हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला में। ये आपका अपना कार्यक्रम है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: ਸੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ।
1: अरुण बख्शी और पूर्णिमा की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म गोपी किशन से ये गीत। इस गीत को संगीत दिया था आनंद मिलन ने और गीत लिखा था समीर ने।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
1: श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की युगल आवाजों में फिल्म गुन्हा से। संगीत आनंद राज आनंद का है और गीत लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने।

0: छोटा मैसेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, छोटा छोटा मैसेज हो लेकिन सार गर्भित हो, है ना।
1: जी
0: हम कोई बात करें सटीक हो,
1: हाँ
0: हमारे शब्द नपे तुले हों, तो ये समझिए तुरंत जो आप बोलेंगे, जो बात अपनी कहेंगे, एक कम्युनिकेशन जो गैप होता है समझने का, वो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल दूर हो जाता है।
1: हाँ,
0: आपकी
1: आप
0: नीट एंड
1: चाहे दो
0: क्लीन
1: लाइनें लिखें बट सटीक लिखें।
0: सटीक लिखे हैं ना, तो ये इसकी एक क्वालिटी होती है और ये होनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मिनोचा साहब, आपका नगीना से जुड़े थे। धन्यवाद एक बार फिर अनिल विनोचा और उनका पूरा
1: परिवार।
0: परिवार।
1: और अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, आया है उत्तराखंड ग्राम सेंधी पोस्ट ऑफिस सेंधी खास जिला पौड़ी गढ़वाल से। लिखते हैं, आपका पत्र मिला। प्रस्तुत करने वालों को प्रकाश, मंजू देवी, उज्जवल कुमार, कन्नू प्रिया की ओर से नमस्कार। सभी को मदर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने सभी स्टाफ और श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं। हम आपके नियमित श्रोता हैं, आपके सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। किसी ये कृषि जगत होगा शायद, कृषि जगत में खेती के लिए जानकारी मिलती है, कानूनी सलाह में कानून से संबंधी जानकारी मिलती है और दोपहर 11:30 बजे प्रोग्राम आता है उमंग, वह भी बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। पीटी उषा के विषय में सुना तो अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम उनमें भी आते हैं और युववाणी या पैसा वसूल में जितनी जानकारी दी जाती है सच में पैसा वसूल करने वाली जानकारी दी जाती है। आकाशवाणी मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भंडार देती है, सूर्य के समान है जो सबको जीवन प्रदान करने वाली रोशनी देता है। हमें आकाशवाणी इसी तरह लगता है। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।
0: देखिए आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले यही कहेंगे हम, हमारे श्रोता हैं उत्तराखंड ग्राम सेंधी पोस्ट ऑफिस सेंधी खाल जिला पौड़ी गढ़वाल के, है ना। तो मंजू देवी हैं, उज्जवल कुमार हैं, कन्नू प्रिया हैं, तो ये हमारे नियमित श्रोता हैं और
1: और
0: प्रतिभाग करते हैं लाइव
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रमों में भी, है ना। तो 90 साल पूरे होने पर सभी स्टाफ को और श्रोताओं को इन्होंने बधाई दी है, तो आपकी बधाई हमारे स्टाफ तक भी पहुंच रही है और सभी श्रोताओं तक भी पहुंच रही है
1: और
0: जो इस
1: आज के
0: वक्त।
1: ज्यादातर जितने भी हमारे पास मैसेज आए आ रहे हैं या जितने भी हमने पढ़ ली हैं, सभी में जो है एक बात सबने साझा की है कि 90 साल बेमिसाल की शुभकामनाएं जो है वो हमें दी हैं और आप सभी श्रोताओं के साथ ये संभव हुआ है। क्यों मनोज जी?
0: बिल्कुल, और इसके अलावा आपने लिखा है कि भाई उमंग कार्यक्रम अच्छा लगता है और ज्ञानवर्धक। सभी कार्यक्रम हमारे केंद्र से जितने भी प्रसारित किए जाते हैं वो किसी भी वर्ग के लिए हों, वो जानकारी देने वाले होते हैं, सूचना प्रदान करने वाले होते हैं, उनकी खासियत ये ही होती है। बस आपका क्या काम है कि आप लगातार उनको वक्त निकाल कर
1: सुनते
0: सुनते
1: रहें।
0: रहिएगा। और कैसे सुनेंगे, रेडियो के जरिए भी सुन सकते हैं आप, और आजकल AIR ऐप भी आ चुका है और आपने भी डाउनलोड किया हुआ होगा। न्यूज़ ऑन AIR चैनल है, ऐप है वो, उस पर आप किसी भी रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं और आप बिल्कुल हमारे करीबी हैं, उत्तराखंड बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला मैसेज,
1: ये अगला मैसेज हमारे पास आया है, शाइस्ता परवीन, मुनीजा खानम, मुशर्रफ और सलमान खान का, नगीना रोड, धामपुर, जिला बिजनौर से। लिखते हैं, नमस्कार। सर्वप्रथम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी नजीबाबाद ने 8 मई कदम ताल रैली का आयोजन किया। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। अच्छे आयोजन के लिए बधाई। आयोजन का लाइव प्रसारण सुना। लाइव प्रसारण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। काफी जगह समझ नहीं आया कि क्या बातचीत चल रही है। मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी नजीबाबाद से सुशील त्यागी का कार्यक्रम मुझे याद है, जरा जरा सुना, अति उत्तम लगा। प्रस्तुतकर्ता को हमारी बधाई पहुंचाइएगा। आकाशवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उच्चारण दोष
0: से
1: निरस्त
0: निराशा आ
1: आ
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में आज शोभित शर्मा की अनुपस्थिति है, उनके आने से कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। कृपया आगे उनको जरूर हमारी ओर से कार्यक्रम में आमंत्रित करें।
0: हमारी श्रोता हैं शाइस्ता परवीन, मुनीजा खानम, मुशर्रफ और सलमान खान, नगीना मार्ग, धामपुर, जिला बिजनौर के। और सबसे पहले तो ये 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो भाई आपको भी, आप हमारे श्रोता हैं। और इसके अलावा कह रहे हैं कि भाई कदम ताल का जो यानी वॉकथन का
1: बिल्कुल
0: आयोजन किया गया था, बिल्कुल किया गया था, उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया और जानकारी आपको प्रिंट मीडिया से मिले, तो मीडिया के तो बहुत सारे माध्यम हैं, हमारे फेसबुक हो गए और न जाने कितने, वो हम सब जानते ही हैं। बहुत फिलहाल आपने लाइव प्रोग्राम सुना, बहुत उसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा आपको मुझे याद है जरा जरा कार्यक्रम में आपको सुशील त्यागी जी का कार्यक्रम

0: बहुत अच्छा लगा, उनके अनुभव आपको अच्छे लगे, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाह रहे हैं आपकी भाई, आकाशवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उच्चारण दोष से नीरसता आ जाती
1: बिल्कुल आ
0: है,
1: जाती है।
0: और कई बार होता क्या है कि भाई हमारी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, और कई बार हो भी जाता है कि उच्चारण दोष है। ऐसा नहीं है कि हम इस बात को नहीं मान रहे, बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, सारी चीजें होती हैं जब आदमी काम करते हैं ना, तो कई बार तो क्षमा कर लिया जाता है लेकिन कई बार होता भी है। फिलहाल इस पर हम काम करेंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपका कहना है कि साहब शोभ शर्मा जी अनुपस्थित हैं, आने कार्य उनके आने से कार्यक्रम में 4 चंद लग जाते हैं, तो
1: जी
0: बिल्कुल आप थोड़ा सा वेट करिएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि उनको हम बहुत जल्द से जल्द इस कार्यक्रम में लेके जाएं और आपको रूबरू कराएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतने अच्छे SMS करने के लिए।
1: और ये अगला मैसेज हमारे पास चकला बाजार समाना शहर पंजाब से आया है। भेजने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, सुनीता कंचन, बंटी जिंदल, हसमुख लाल जिंदल और इनका सारा परिवार। लिखते हैं पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 3 तारीख 5वां महीना,
0: 3 मई
1: ये
0: कहना चाह रहे हैं,
1: 3 मई कहना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना,
1: सुना
0: पत्र भी शामिल हुआ।
1: हाँ, जिससे जिसमें हमारा पत्र भी प्रोग्राम में शामिल हुआ। इसके लिए हम आपके सभी अनाउंसर और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो बहुत ही पुराने श्रोता हैं, 1978 से प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के। जब आपकी बहुत ही अच्छे अनाउंसर प्रेम कुमार सदाना जी की पत्रों पर फरमाइशी प्रोग्राम पेश किया करते थे। सबसे पहले पोस्ट कार्ड हुआ करता था, 10 पैसे का, फिर 15 पैसे का, फिर 25 पैसे का और अब तक 50 पैसे का हो गया था। लेकिन आज तक सभी अभी पोस्ट कार्ड फरमाइशी प्रोग्राम में कम से कम 275 आकाशवाणी में रोज डालते हैं। देखिए 275 रोज डालते हैं।
0: बिल्कुल
1: आपके सभी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे गीत तुम्हारे संदेश.com हमें बहुत अच्छा लगता है। इसको हफ्ते में 3 बार कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए आपका और आपके सभी अनुजों का गुलाब के फूलों के साथ पूरा धन्यवाद करते हैं। देखिए
0: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये हमारे नियमित श्रोता हैं भाई, खुश दिल परिवार है, पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू इस्माइल और इनका पूरा परिवार। और 3 मई की जो कार्यक्रम पेश हुआ था, आपका पत्र मिला, उनको अच्छा लगा, और अच्छा भी इसलिए कह सकते हैं कि भाई उनका पत्र शामिल हुआ। भाई शामिल नहीं होता तो कई बार हमारे श्रोता कह देते हैं कि साहब हमारा खत शामिल नहीं हुआ। चलिए ये तो चलता ही रहता है, और इंतजार करते रहिएगा, खत लिखते रहिएगा SMS के जरिए आप हमें। और बहुत हमारे नियमित श्रोता हैं सन 1978 से, और प्रेम कुमार सडाना जी की बात आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल साहब हमारे परमानेंट अनाउंसर रहे हैं, नियमित अनाउंसर रहे हैं, और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। और भाई कॉस्टिंग की बात लिखी है तो कॉस्टिंग का तो बदलाव होता ही होता रहता है, और 275 आकाशवाणी में रोज खत डालते हैं, बहुत बड़ी बात है आपकी। और आपने सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है और कह रहे हैं कि भाई संदेश.com अच्छा लगता है, इसको आप हफ्ते में 3 बार कर दें। ठीक है, अगर 3 बार अगर हमने इसको कर दिया या कराने की कोशिश की ज्योति, तो फिर और कार्यक्रम हमारे कहाँ जाएंगे। हाँ, वो भी तो सुनेंगे ना आप, उनकी भी तो हमें राय
1: बिल्कुल
0: चाहिए ना, उसका फीडबैक चाहिए हमें, है ना। तो फिलहाल अभी आप इस संदेश.com में जो ये एक ही बार है एक हफ्ते में, इसका पूरा आनंद आप उठाइएगा, और हम सुनते हैं आपके जो नाम है ना वो कितनी बार शामिल होते हैं, ये सब हमें जानकारी है
1: और
0: इस
1: देखिए
0: कार्यक्रम के
1: हफ्ते में
0: ऊपर।
1: अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया आप बड़ी आसानी से दे पाते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रोग्राम अगर हम उसको रोज सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आप उस पर कर पाएंगे, है
0: है ना,
1: ना?
0: और फिर हमारे श्रोता कहेंगे कि भाई इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही है, जरा
1: जी।
0: सा इसको आप हल्का करो। तो चलिए अगला खत लेते हैं SMS के
1: और
0: जरिए।
1: अगला खत हमारे पास आया है विलेज पोस्ट राहुल नगरी से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका अक्षित चौहान, भूमिका चौहान का। और लिखते हैं नमस्कार, आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर 8 मई को वाकेथन का लाइव प्रसारण सुना, बहुत अच्छा लगा। 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती पर कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ जबकि उनके विषय में चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। उस दिन तलक महमूद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में सूरज के साथ साथ और युववाणी में भी बताया गया, थोड़ी सी चर्चा महाराणा प्रताप और उनके गोड़े चेतक के बारे में भी होनी चाहिए थी। मनोज वर्मा जी के साथ समय का पता नहीं चलता, कब कट जाता है। ज्योति जी, निधि जी, राजवीर जी, धर्मेंद्र जी, रेणु कोटनाला जी बहुत अच्छे अनाउंसर हैं। सभी प्रोग्राम

0: भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं।
1: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे नियमित श्रोता हैं और बहुत दिल से लिखते हैं, राहुल नंगली के हैं, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान और इनका पूरा परिवार 90 साल की बधाई दे रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी के इस नजीबाबाद के चैनल से, है ना, क्योंकि ये पूरे भारत में हुई वॉकथन ये, है ना। इसके अलावा भाई महाराणा प्रताप जी की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे
0: किसी ना किसी प्रोग्राम में
1: जरूर
0: तो
1: किया गया होगा। ऐसा होता नहीं है आकाशवाणी नजीबाबाद से, हमें बिल्कुल इस चीज का ध्यान रहता है कि किसकी जयंती आज है। जैसे आज हमने कैफी आजमी के बारे में भी बात की है ना, तो ये हमें सब पता रहता है और इसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्राम के जरिए वो जानकारी आप तक मुहैया कर दी जाए। चलिए खैर, आपको जितने भी आपने नाम लिखे हैं कि साहब वक्त का पता ही नहीं चलता, बहुत बहुत आपका प्यार मोहब्बत है। इसके अलावा सभी का जो नाम लिखे हैं आपने कि भाई ज्योति, निधि, राजवीर, धर्मेंद्र जी, रेणु कोटनाला, अच्छे अनाउंसर है, बहुत अच्छी बात है, आप दिल से सुनते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं आप, अच्छा फीडबैक रहता है आपका हमेशा, तो इसलिए आपको सब अच्छे नजर आ रहे हैं। फिलहाल छोटी मोटी बात तो रहती रहती है और उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और किया भी हमारे जो है केंद्र से गया होगा ये बात। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, राहुल नंगली से, आचार्य सत्यवीर और उनके पूरे परिवार।
0: ये अगला एसएमएस यानी कि मैसेज हमें मिला है, भेजने वाले हैं करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी। ये लिखते हैं, कार्यक्रम आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वाले मनोज कुमार जी। अच्छा, आपको मनोज कुमार कर दिया है इन्होंने।
1: कोई बात नहीं है, प्रेम है उनका
0: जी। ज्योति जी को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 8 मई को सुबह एक यादगार सुबह बन गई, आपका लाइव प्रोग्राम की बहुत पसंद आया, गीत तुम्हारे, सुहाना सफर, संदेश.com, आपका पत्र मिला, सभी कार्यक्रमों को मन लगाकर सुनते हैं।
1: हमारे नियमित श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और इनके अन्य साथी के भाई 90 वर्ष पूरे होने पर सभी को इस बधाई दे रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, 8 मई की सुबह यादगार सुबह बनी गई थी वो, लाइव प्रोग्राम आपने पसंद किया है, तो हमारे केंद्र से अनेक लाइव प्रोग्राम आजकल प्रसारित किए जा रहे हैं और आपको पसंद आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहाना सफर संदेश.com, आपका पत्र मिला, कार्यक्रमों को मन लगाकर सुनते हैं। इसके अलावा भी कार्यक्रम है ज्योति हमारे केंद्र से,
0: बिल्कुल बहुत सारे कार्यक्रम
1: हैं,
0: बहुत अच्छा
1: आप उसको भाई हमें शिकायत रहेगी आपसे। चलिए अगले खत में लिखिएगा इस बात को
0: कि आपने कौन कौन से इस हफ्ते प्रोग्राम सुने, उनके बारे में आप जरूर लिखिएगा।
1: बिल्कुल।
0: और ये अगला मैसेज, अगला क्या हम ऐसा कर, समय ऑलमोस्ट पूरा हो गया है तो ये, हाँ बिल्कुल लास्ट मैसेज हम पढ़ रहे हैं, आया है मोहम्मद वक्कार फरीदी और इनके सभी परिवार वालों का, और ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप, हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद आते हैं, हमें 9 मई का गीत तुम्हारे जो फरीना और रेणु कोटनाला जी ने पेश किया बहुत पसंद आया, जिंदगी लाइव जो रेणु कोटनाला जी ने पेश किया अच्छा लगा, गीत आपके नाम जो मोनिका और उज्मा ने पेश किए बहुत पसंद आए, 8 मई का जागरूक श्रोता जो फैजुर रहमान जी और पारुल जी ने पेश किया अच्छा लगा, हेलो नजीबाबाद और रात के हम सफर सचिन शर्मा जी ने, इन्होंने ऐसे ही और डेट वाइज
1: डेट वाइज लिखा है, तो भाई हमारे जो है ना नियमित श्रोता हैं वकार और इनका पूरा परिवार, बस ये तारीफ लिख रहे हैं और डेट वाइज लिखते हैं, हमेशा से ही लिखते हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें, है ना, कंटिन्यू करें फिलहाल, बस इसी के लिए कि आप इसी तरीके से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिएगा, अपना प्रेम बनाकर रखिएगा आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की, यानी आपका पत्र मिला कार्यक्रम संपन्न करने की, मुझे यानी मनोज वर्मा और
0: ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: अब चांदनी के पिता कुलभूषण खरबंदा को पता लगता है कि चांदनी और चंदर का मिलना जुलना चल रहा है। इस पर चांदनी को चांदनी के पिता डांटते हैं और चांदनी से कहते हैं, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ चांदनी चंदर को मिलने पर घड़ी देती है और कहती है, कल ठीक 5 बजे घर पहुँचना है। अगले दिन चंदर 5 बजे से पहले ही आ जाता है, जहां चांदनी और चांदनी की माँ उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि चंदर को 5 बजे आना था और चंदर 5 बजे से पहले ही आ गया था। चांदनी के पिता चंदर से बातचीत करते हैं और दोनों की मंगनी तय हो जाती है और चंदर चांदनी से कहता है,
1: ए, क्या हुआ?
2: सच तो यही है चांद, एक पल के लिए लगा कि बस सब खत्म, खो दिया मैंने अपनी चांद को।
1: चंदर?
2: हाँ चांद, उसे एक पल में पता चला कि तुम कितनी कीमती हो मेरे लिए, कि तुम्हें कभी खोना पड़े या तुमसे जुदा होना पड़े तो मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना।
1: बस बस चंदर।
0: सब लोग मंगनी के लिए निकल जाते हैं, तभी चंदर को पता लगता है फैक्ट्री में एक मजदूर दबकर घायल हो गया है। चंदर उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल से निकलने में चंदर को देर हो जाती है। दूसरी तरफ चांदनी और सभी मेहमान चंदर का इंतजार कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, जिससे चंदर का एक्सीडेंट हो जाता है और वह नदी में बहता हुआ पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब कहानी दूसरी तरफ मोड़ लेती है, जहां पाकिस्तान में रह रहे लोगों के बीच आगे की कहानी को दिखाया जाता है।

0: अब फिल्म की कहानी हीना के साथ चलती है। हीना नदी से पानी लेने जाती है, जहां उसे नदी में चंदन मिलता है। हीना सबको बुलाती है और चंदर को घर लाया जाता है। घर पर चंदर का इलाज बेबी गुल यानी फरीदा जलाल करती है। बेबी गुल हीना से कहती है कि यदि मरीज का शरीर ठंडा पड़े तो बाबा जान से कह देना, वो उसके हाथों पर गर्म तेल लगा दे। खान बाबा, जिन्हें सब बाबा जान कहते हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, इसीलिए हीना उसके हाथों पर तेल लगा देती है। हीना अपनी बकरी नूरी से बातें करती है, जहां दरोगा यानी रजा मुराद हीना को परेशान करता है। शहबाज खान, जो दरोगा के रूप में है, खान बाबा से कहता है, रात आंधी तूफान आया था और ऐसे तूफान का सहारा लेकर जासूस देश में घुस आते हैं।
1: क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी?
2: वो क्या है खान बाबा, की हमारे कुछ आला अफसरान इस इलाके का मायना करने के लिए आए हुए हैं। अगर एक छोटा मोटा जानवर मिल जाए तो उनकी शानदार दावत हो जाए।
1: जरूर जरूर, मगर अफसरान मायना खैरियत तो है।
2: आप तो जानते हैं कि परसों रात गजब का तूफान आया था। ऐसी तूफानी रातों का फायदा उठाकर हमारे पड़ोसी उनके जासूस हमारे मुल्क की सरहदों में घुसा देते हैं।
1: तो हमारे जासूस जाते होंगे? क्यों
2: जाते होंगे?
1: पड़ोसियों के दुख सुख में काम आना, दीवारों पे उनके घर खीर सेवैयां भेजना, ये रिवाज तो सुने थे, मगर ये जासूस भेजने का रिवाज क्यों कर?
2: आप इन पड़ोसियों को नहीं जानते खान बाबा। अरे ये जल्लाद होते हैं जल्लाद, अगर गफलत में कोई अपनी गर्दन झुका ले तो झट से गर्दन काट देते हैं उसकी। लेकिन हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह आता है।
0: हीना चंदर की खूब सेवा करती है, जिससे चंदर होश में आ जाता है।

दूसरी तरफ किरण कुमार यानी अशरफ के मन में दरोगा की कही बातें घर कर जाती हैं। अशरफ चंदर से उसका नाम पूछता है लेकिन चंदर सब भूल जाता है। बेबी गुल कहती हैं कि दिमाग पर चोट लगने की वजह से चंदर अपनी याददाश्त खो चुका है। अशरफ कहता है इस लड़के को पुलिस में सौंप देते हैं लेकिन खान बाबा और बेबी गुल उसे समझा देते हैं। वह मान जाता है लेकिन फिर भी अशरफ के मन में उसके लिए शंका पैदा हो चुकी है। दूसरी ओर भारत में चंदर को मरा हुआ मान लेते हैं। दूसरी ओर भारत में चंदर को सब लोग मरा हुआ मान लेते हैं। हीना चंदर को चांद का नाम देती है। अब हीना चांद यानी चंदर को पसंद करने लगती है। चांद बेबी गुल के यहाँ घड़े बनाने का काम करने लगता है। हीना और चांद की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं।

0: खान बाबा अशरफ और साथियों को पास के गांव में चांद के घर वालों को खोजने भेजते हैं, लेकिन अशरफ आकर कहता है आसपास के गांव में कोई चांद नाम का लड़का नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज खान हिना के लिए अपनी शादी का रिश्ता लेकर आता है, लेकिन खान बाबा शहबाज खान को साफ इनकार कर देते हैं। खान बाबा परेशान होते हैं तो बेबी गुल चांद और हिना की शादी करने के लिए कहती है। खान बाबा तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में चांदनी चंदर का इंतजार कर रही है। उधर पाकिस्तान में चंदर शेर के मुंह से बच्चे को बचा कर लेकर आता है। सभी चांद का शुक्रिया अदा करते हैं। अब चांद और हिना की शादी खान बाबा तय कर देते हैं। चांद खान बाबा से कहता है मेरा कोई खानदान नहीं है, मुझे मेरे घर का अता पता भी नहीं है, इस पर मैं हिना से शादी कैसे कर सकता हूँ। बेबी गुल कहती हैं आज से तुम मेरे बेटे हो, और चांद और हिना की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हिना के हाथों में मेहंदी लग रही है, तभी चांद को सब याद आ जाता है और चांद कहता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी मंगनी होने वाली थी, और वो बताता है मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। तब अशरफ चांद को बताता है वह पाकिस्तान में है। अशरफ गुस्से में चांद को मारना चाहता है और खान बाबा को कहता है आपने मेरी बात नहीं मानी, अब देखिए ये क्या हुआ। तब चांद अपनी सारी कहानी खान बाबा और सभी को सुनाता है। शादी टूट जाती है और हिना बारिश के पानी और आंसू से अपनी मेहंदी धो देती है। अब हिना अपने आंसू पोंछ लेती है और सामान्य व्यवहार करती है ताकि कोई उसे दुखी देखकर दुखी ना हो। हिना चंदर के लिए दूध लेकर जाती है तो अशरफ उसे रोकता है और कहता है
1: ना होकर हिंदू है, चांद ना होकर चंद्र है, तो बड़े

0: शर्म की बात है।
1: ये आप क्या कह रहे हैं खान बाबा?
0: अशरफ मियां, आसमान में चमकते चांद को हम चांद के बजाय चंदर कैसे पुकारने लगे, तो अल्लाह उसकी रोशनी तो कम नहीं कर देता। फिर एक इंसान का नाम चांद न होकर चंदर हो गया, तो उसकी तरफ हमारा रवैया क्यों बदलने लगा? क्या अब वो इंसान नहीं रहा, हमारा मेहमान नहीं रहा?
1: मेहमान? क्या खूब सिला दिया है उसने हमारी मेहमान नवाजी का। वाह, उस नमक हराम ने हमारे जज्बात से खेला, हमें धोखा दिया खान बाबा, हमारी हिना की जिंदगी बर्बाद कर डाली।
2: खान बाबा कहते हैं जिस तरह वह चुपचाप आया था वैसे ही चुपचाप उसे उसके मुल्क हम पहुंचा देंगे। खान बाबा एक तरकीब सोचते हैं और कहते हैं हम लोग आज ही अपना पड़ाव उठाकर सिकंदर गुल की तरफ रवाना हो जाएंगे और रास्ते में अशरफ और रज्जाक दोनों अलग हो जाएंगे और रात के अंधेरे में चांद को सरहद पार करा देंगे। चंदर हिना से अपने किए की माफी मांगता है। दूसरी तरफ अशरफ शहबाज खान को सब बता देता है कि चंदर हिंदुस्तानी है और आज उसको सरहद पार कराई जाएगी। चंदर खान बाबा से विदा लेता है और हिना से जाने की इजाजत लेता है। हिना चंदर को मेहंदी देकर कहती है कि ये मेहंदी आप चांदनी के हाथों में लगाइएगा। इधर चांदनी भी इंतजार कर रही है। जैसे ही चंदर सरहद पर पहुंचता है शहबाज खान उसे गिरफ्तार कर लेता है। दरोगा चंदर से कहता है अगर हिना खान बाबा और कुनबे को बचाना चाहते हो तो इस हलफनामे पर इकबाले जुर्म कबूल कर लो। चंदर सबको बचाने के लिए उस हलफनामे पर हस्ताक्षर कर देता है। हिना जेल में चंदर से मिलने जाती है और चंदर हिना से सारी बातें बता देता है कि किस तरह शहबाज खान ने उससे हस्ताक्षर करवाए हैं। तब हिना चंदर को चिट्ठी लिखने के लिए कहती है।

0: हिना चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालती है, लेकिन शहबाज खान वो चिट्ठी निकाल लेता है। दूसरी तरफ चांदनी से चंदर का दोस्त सुरेंद्र शादी के लिए कहता है, लेकिन चांदनी उसे मना कर देती है। इधर पाकिस्तान में शहबाज खान हिना से कहता है कि अगर वह चंदर को बचाना चाहती है तो उससे शादी कर ले। हिना चंदर को बचाने के लिए उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब शहबाज खान के मंसूबों का पता खान बाबा को लगता है और हिना अपनी कुर्बानी देना चाहती है तो खान बाबा खुद को संभाल नहीं पाते और उनका दुख आंसू बनकर गिरने लगता है। जब अशरफ को इस बात का पता लगता है कि चंदर बेगुनाह है और हिना से शादी करने के लिए शहबाज खान ने ये चाल चली थी, तो अशरफ हिना से वादा करता है कि चंदर को वह सरहद पार कराएगा। जब शहबाज खान चंदर को अदालत लेकर जा रहा होता है, तब अशरफ और रज्जाक चंदर को अपने साथ भगा लेते हैं। शहबाज खान उनका पीछा करता है, जहां अशरफ को शहबाज खान चंदर समझकर गोली मार देता है। अशरफ की मौत हो जाती है। हिना और चंदर भाग जाते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में शफी नामदार यानी पुलिस अधीक्षक को खान बाबा और रज्जाक सब बता देते हैं और पुलिस अधीक्षक चंदर की सारी तहकीकात करते हैं और पाते हैं चंदर बेकसूर है। इधर भागते भागते चंदर और हिना सरहद पर पहुंच जाते हैं। पीछे से शहबाज खान फायरिंग कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनकर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हिना को गोली लग जाती है। पुलिस अधीक्षक शहबाज खान को गोली मार देता है। अंत में हिना की भी मौत हो जाती है। चंदर का दोस्त सुरेंद्र आ जाता है और चंदर कहता है,
1: समझ तो मुझे भी नहीं आया ये सब क्या हो गया, क्यों हुआ ये ऐसा, इतनी सारी गोलियां किसने एक मासूम फरिश्ते जैसी लड़की के जिस्म में क्यों दाग दी गई, क्यों, किसकी थी ये गोलियां और वो गोली किसकी थी जिसने इस बेगुनाह की जान ले ली, हिंदुस्तान की गोली थी क्या पाकिस्तान की, नहीं वो तो सिर्फ वहशियत की गोली थी जो इंसानियत के कलेजे में जा लगी, नफरत की गोली थी जिसने मोहब्बत को शराफत को मिटा दिया, खत्म कर दिया, बड़ी शर्म की बात है ये, बड़ी शर्म की बात।
0: सब लोग आ जाते हैं। चंदर चांदनी को हिना की दी हुई मेहंदी देता है और फिल्म का दी एंड हो जाता है। श्रोताओं, इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन द्वारा रचा गया था और गीत रविंद्र जैन, नक्श लयालपुरी और मौलाना कुदसी द्वारा लिखे गए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 22 लाख यूनिट बिकने के साथ इस फिल्म का साउंडट्रैक उस वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। इस फिल्म के सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज से सवारा है लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, मोहम्मद सईद, फरीद साबरी और मोहम्मद अजीज ने। और श्रोताओं, आज का फिल्मी संडे कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अगले रविवार फिर से उपस्थित होंगे एक और नई फिल्म की कहानी लेकर। तब तक के लिए ज्योति गौड़ को दीजिए का आज्ञा, नमस्कार।

0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے،
0: فلمی سنڈے،
1: فلمی سنڈے۔
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी फिल्म हिना की कहानी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को बता दें, एक और नए कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आज आप सुनेंगे पटकथा लेखक सागर सरहदी और अन्य के गीत। लोकधारा कार्यक्रम में 1:45 पर सुनेगा विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राज

0: श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime

0: Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions and takes the country forward.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए, साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: इन Tamil Nadu द फाउंडर ऑफ Tamilaga Vetri Kazhagam और TVK C. Joseph Vijay was sworn in as the chief minister this morning State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut and he became the first chief minister of the state since 1967. Who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member House. According to a Lok Bhavan press release, the Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay. In a social media post, Mr. Modi said, The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of eight BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: Yeah.
3: मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है इससे मरकजी वजारतों महकमों खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदामात में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज़ को मजबूती मिलेगी एक रिपोर्ट
2: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियसना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फेहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ नौवुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफबरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैर कानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए 2 रोजा तहरीरी इम्तिहान कल से शुरू हो गया। पहले रोज इम्तिहान 2 मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजों का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी और आर्ट समेत 4 मौजों का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में 1-1 प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 1 बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल वाटिका।

0: छोटे सपनों की सबसे प्यारी बात हो। जब भी मैं घबराता हूँ तुम हिम्मत बन जाती हो, मेरे आंसू गिरने से पहले तुम मुस्कान दे जाती हो, मेरी छोटी सी गलती पर भी प्यार से समझाती हो, खुद भूखी रहकर भी माँ मुझे प्यार से खिलाती हो। दुनिया में सबसे सुंदर बस तुम ही हमारी हो, बस तुम ही हमारी हो। तो बच्चों आप समझ गए हैं ना कि किसकी बात की जा रही है। जी हाँ, मदर्स डे यानी कि जो हम मई महीने के दूसरे रविवार को मनाते हैं। बच्चों ये दिन हमारे माँ के प्यार, त्याग और ममता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन माँ का होता है, क्योंकि माँ हमारे जीवन की वो शक्ति है जो हमें हर कठिनाई में आगे बढ़ना सिखाती है। माँ हमेशा केवल प्यार ही नहीं देती, बल्कि वो हमें स्वावलंबी बनना और अपने अंदर विश्वास करना भी सिखाती है, जिससे जीवन में मेहनत करके हम आगे बढ़ें। जब हम अपने काम खुद करना सीखते हैं, अपने मन में विश्वास रखते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी माँ को होती है। बच्चों मम्मी हमें सिर्फ प्यार नहीं करती, वो हमें आत्मनिर्भर भी बनाती है। इसलिए मदर्स डे पर हम अपनी मम्मी को धन्यवाद कहें और ये संकल्प लें कि हम अच्छे संस्कारों के साथ आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेंगे। सच में बच्चों आज मम्मी के लिए इस संकल्प से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों हमें अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके कामों में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और वो हमारी देखभाल करती है, अच्छे संस्कार देती है। और जब हम बीमार होते हैं तो माँ पूरी रात जागकर हमारी सेवा करती है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है और माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है। माँ की ममता छाँव जैसी हर दुख को दूर भगाती है, अपने पैरों पर चलना भी माँ ही हमको सिखाती है। तो एक बार फिर सभी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे। और बच्चों इसके साथ साथ हम एक और भी चर्चा करेंगे, स्वावलंबन बढ़ाएं, खुद में आत्मविश्वास। बच्चों आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्हें किसी भी काम को करने से पहले डर लगता है, या स्कूल में स्टेज पर बोलने में घबराहट होती है। या बच्चों इसमें कोई डरने की या चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, या ये कहिए कि आत्मविश्वास की। बच्चों हम सबके अंदर ना एक कोई ख़ास ताकत होती है जो हमें हिम्मत देती है, और उसे ही कहते हैं हम आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसा। अगर हम एक बार मन में ठान लें कि हम कर सकते हैं, तो हमारा जो डर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों आप छोटी छोटी कोशिश करते हैं, करते रहिए, जैसे कविता बोलना, खेल में भाग लेना या कुछ भी नया सीखना हो, तो आपका इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए बच्चों, गलती करना भी अच्छी बात है, क्योंकि गलती से ही तो हम सीखते हैं। इसलिए डरे नहीं बच्चों, और हर दिन आप अपने आप से कहें कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। फिर देखिए आप हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे, और आप अगर हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे, सक्सेस होंगे, तो फिर आपकी मम्मी को तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी अपने बच्चों की तरक्की पर बहुत खुश होती हैं। तो प्यारे बच्चों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और बच्चों अब हम बात करते हैं बाल मुक्की। तो आइए सुनते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी बातें। बच्चों बाल मुक में आप सबका स्वागत है। आइए बात करते हैं अपने कुछ दोस्तों से, पहले जान लेते हैं उनसे उनका परिचय।
1: मेरा नाम अर्णव वर्मा है।
2: मेरा नाम दर्श शर्मा है।
3: मैं केशव।
4: मेरा नाम भवि है।
0: तो बच्चों आज हमारे साथ हैं अर्णव, भवि, दर्श और केशव। अर्णव आप बड़े उदास से नजर आ रहे हैं, क्या बात हो गई भाई?
1: दीदी मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
0: अर्णव भाई गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी, आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती है?
1: दीदी मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती है।
0: गर्मी अच्छी नहीं लगती है? बच्चों अर्णव को गर्मी अच्छी नहीं लगती है, तो चलिए पूछते हैं कि अर्णव को गर्मी क्यों नहीं अच्छी लगती है। तो आज हमें टॉपिक भी मिल गया बात करने का, तो क्यों ना आज मौसम के बारे में ही

0: बात कर ली जाए तो अर्णव से पूछते हैं कि अर्णव को गर्मी अच्छी क्यों नहीं लगती है।
1: दीदी गर्मी में ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और धूप भी बहुत होती है। बाहर जाने तक का मन नहीं करता है। मुझे तो सर्दी बहुत अच्छी लगती है।
0: तो अर्णव आपको सर्दी अच्छी क्यों लगती है?
1: अगर सर्दी में हमें सर्दी लगती है तो हम कई सारे कपड़े भी पहन सकते हैं और गर्मी में तो जाने का मन तक नहीं करता बाहर, पर सर्दी में तो बहुत ज्यादा मन करता है। और खाने को भी कई सारे पकवान हैं, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पकवान दिए जाते हैं।
0: तो अर्णव को सर्दी इसलिए अच्छी लगती है कि उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं। तो भाई गर्मी में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं खाने की, क्यों भाई दर्श? तो चलिए दर्श से भी पूछते हैं कि दर्श को क्या अच्छा लगता है, गर्मी या सर्दी?
2: दीदी मुझे गर्मी अच्छी लगती है,
0: तो दर्श आपको गर्मी क्यों अच्छी लगती है?
2: उसमें आइसक्रीम खाने को मिलती है और जूस भी पीने को मिलता है। मैं खेलने भी जाता हूँ और पापा वहाँ पे मुझे आइसक्रीम भी खिलाते हैं, इसलिए मुझे गर्मी अच्छी लगती है। हाँ दीदी, गर्मी में आम भी तो आते हैं।
0: हाँ भाई आम तो गर्मी में ही आते हैं, तो दर्श आपको आम बहुत अच्छे लगते हैं।
2: जी दीदी।
0: तो केशव आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है?
3: दीदी मुझे भी सर्दी ही अच्छी लगती है,
0: क्यों आपको सर्दी क्यों अच्छी लगती है?
3: क्योंकि मम्मी ना सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाती हैं।
0: तो केशव क्या मम्मी गर्मी में अच्छी अच्छी अच्छी चीजें नहीं बनाती है?
3: मम्मी कहती हैं कि बहुत गर्मी लग रही है इसलिए इतनी जल्दी चीज बनाती नहीं है।
0: अच्छा तो ये तो सही बात है भाई, मम्मी लोग को भी तो गर्मी लगती है। पर केशव गर्मी में भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है। देखो मैंगो आता है, लस्सी बना के लोग पीते हैं, जूस पीते हैं, तरबूज खरबूज सारी चीजें देखो गर्मी में ही आती हैं। तो आपको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती हैं?
3: अच्छी लगती हैं।
0: तभी आप कह रहे हैं कि आपको सर्दी ही अच्छी लगती है।
3: वैसे तो मुझे आम भी बहुत पसंद है।
0: तो आम तो गर्मी में ही आता है, तो इसलिए आपको गर्मी भी थोड़ी थोड़ी तो अच्छी लगती है।
3: हाँ मुझे गर्मी भी अच्छी लगती है, बस पंखा एसी चलना चाहिए।
0: ओहो पंखा और एसी चलना चाहिए तो गर्मी अच्छी लगेगी केशव को। अच्छा, आप भाभी से पूछते हैं कि भाभी को कौन सा मौसम अच्छा लगता है?
4: दीदी मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, सर्दी भी अच्छी लगती है, गर्मी भी अच्छी लगती है।
0: वेरी गुड, देखो भाभी को तो गर्मी भी अच्छी लगती है और सर्दी भी अच्छी लगती है। जी हाँ बच्चों, सब मौसम की अपनी अपनी अहमियत है भाई। गर्मी में गर्मी की चीजें अच्छी लगती हैं और सर्दी में सर्दी की चीजें अच्छी लगती हैं।
4: दीदी गर्मी में तो हम नानी के घर भी जाते हैं, बहुत सारी आइसक्रीम्स भी खाते हैं, मामा लोग शाम को घुमाने भी ले जाते हैं।
0: जी हाँ बच्चों, छुट्टियों में देखो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे नानी के घर जाते हैं, वहाँ से अच्छे वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, मजा तो आता ही है।
1: दीदी मुझे कहानी भी सुनानी है।
0: हाँ बिल्कुल सुनाओ अर्णव।
1: एक बार की बात है, हवा और सूरज बहस हुई। हवा बोलता है मैं ज्यादा बलवान हूँ और सूरज बोलता है मैं ज्यादा बलवान हूँ। तभी हवा को एक आदमी जाता हुआ दिखता है। हवा बोलती है कि जो भी इस इंसान के कंबल उतार देगा वो जीतेगा। तभी हवा की बारी आती है, हवा बहुत तेज हवा चलाती है, तभी उस इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है और वो और भी कम्बल ओढ़ लेता है जिससे हवा हार जाती है। तभी सूरज की बारी आती है, सूरज बहुत ज्यादा गर्मी फैलाता है जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है और वो अपने सारे कंबल उतार देता है। तब हवा कहती है कि सच में तुम ज्यादा ताकतवर हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी ताकत पे घमंड नहीं करना चाहिए।
0: बहुत अच्छी कहानी सुनाई अर्णव ने हमें कि वाकई बच्चों हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
4: दीदी दीदी मैं भी एक कहानी सुनाऊंगी।
0: ओ अर्णव को देख के भाभी को भी कहानी याद आ गई। तो चलिए बच्चों अब भाभी से भी कहानी सुनते हैं। तो भाभी आप कौन सी कहानी सुनाएंगी हमारे बच्चों को?
4: प्यासे कौए की। एक बार की बात है, एक प्यासा कौआ इधर उधर भटक रहा था जंगल में। उसे पानी का मटका दिखा, वो गया, उसने अपनी चोंच डाली, बट पानी थोड़ा नीचे था तो उसने बहुत सारे कंकड़ डाले। पानी ऊपर आ गया है, पानी ऊपर आया, वो कौआ पानी पीकर चला गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कि मेहनत का फल मीठा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी ने बच्चों कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखिए अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए तभी हम सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो दर्श भी हमें कुछ सुनाना चाहते हैं, तो दर्श आप क्या सुनाएंगे?
2: मैं एक इंग्लिश की पोएम सुनाऊंगा।

0: out, just lift up me and pour me out. मैं एक और पोएम सुनाऊंगा. टिमटिम करते हैं आसमान में कितने सारे तारे हैं, इनको देखो तो लगता है दिन में सबसे न्यारे हैं. नीले पीले कुछ चमकीले कितने प्यारे तारे हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे कितने सारे तारे हैं.
1: बहुत अच्छी पोएम सुनाई भाई दर्श ने. तो प्यारे बच्चों, ये थी आप सब बच्चों से

बातचीत मौसम के बारे में, कुछ बच्चों को गर्मी अच्छी लगती है तो कुछ बच्चों को सर्दी अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को गर्मी में आइसक्रीम मैंगो और बहुत सारी चीजें खाना अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चों को सर्दी में पकौड़े जलेबी खाना अच्छा लगता है। पर प्यारे बच्चों, मौसम सारे अच्छे होते हैं क्योंकि सभी मौसम का अपना अपना काम होता है और वो सभी मौसम अपने अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए हमें भी सभी मौसम का आनंद लेना चाहिए और गर्मी में गर्मी का मजा लेना चाहिए, सर्दी में सर्दी का मजा लेना चाहिए और बरसात में भी बरसात का मजा लेना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ आपसे फिर मिलेंगे बाल मुख में। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे बच्चों की बातचीत? भाई, कुछ बच्चों को गर्मी अच्छी लगती है, कुछ को सर्दी। तो बच्चों, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, आप भी हमें लिखकर भेजिएगा। और चलिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम हमेशा आपके लिए नई नई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर आते हैं जिससे आप खेल खेल में बहुत कुछ सीख सकें। आज भी हम आपके लिए दो बहुत खास दिनों की जानकारी लेकर आए हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। एक दिन हमें विज्ञान और नई तकनीक की ताकत के बारे में बताता है तो दूसरा दिन हमें सेवा, दया और मानवता का महत्व सिखाता है। तो बच्चों, हर वर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन को कितना आसान बनाते हैं। भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, रोबोट और नई मशीनें, ये सभी बच्चों तकनीक के ही चमत्कार हैं। हमें भी विज्ञान को समझना चाहिए और नई खोजों के लिए प्रेरित होना चाहिए। इसी तरह बच्चों, हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बच्चों, ये दिन नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती पर मनाया जाता है। बच्चों, आप लोग तो जानते हैं कि नर्स अस्पतालों में मरीजों की सेवा करती हैं, उन्हें दवा देती हैं और मरीजों का ध्यान रखती हैं, उन्हें जल्दी स्वस्थ होने में मदद भी करती हैं। बच्चों, नर्स वास्तव में दया, सेवा और समर्पण की मिसाल होती हैं। बच्चों, जहां तकनीक हमें आगे बढ़ना सिखाती है, वहीं नर्स हमें सेवा, करुणा का पाठ पढ़ाती हैं। इसलिए बच्चों, हमें भी जीवन में ज्ञान, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी आप कहीं मत जाइएगा, अभी आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं जरूरी संदेश।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: बच्चों, महान विभूति क्रम में आज हम आपसे बात करेंगे महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर की, जिनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। बच्चों, बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया। सुखदेव शुरू से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और युवावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों घनिष्ठ साथी थे। इन्होंने मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। बच्चों, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लंबे मुकदमे के बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। बच्चों, सुखदेव जी का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। सुखदेव थापर ने अपने महान साहस, देशभक्ति और त्याग से युवाओं को प्रेरित किया। वे आज भी भारत के महान शहीदों में गिने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम बाल वाटिका, और हम चाहते हैं, वैसे तो ये कार्यक्रम आप

बच्चों का है, पर हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सब सुने और अपने सुझाव भी हमें भेजें। तो चलिए बच्चों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों आम खाते हैं, मीठे मीठे स्वादिष्ट आम। आ गया ना मुंह में पानी आम का नाम लेते ही। अरे अरे अभी रुक जाइए, पहले हम आपको अपने कार्यक्रम आओ जाने क्रम में फलों के राजा आम के विषय में बताएंगे। बच्चों आप लोगों को पता है कि आम फलों का राजा कहा जाता है और ये बहुत मीठा स्वादिष्ट और रसदार फल होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आम बहुत पसंद होता है और ये गर्मियों के मौसम में आता है, खासकर अप्रैल से जुलाई तक। बच्चों आम कई रंगों में मिलता है, हरा पीला नारंगी और हल्का लाल, और कच्चा आम खट्टा होता है जिसे अचार चटनी और पन्ना बनाया जाता है, और पका हुआ आम मीठा होता है जिसे हम सीधे खाते हैं या उससे आम रस शेक जूस और आइसक्रीम बनाते हैं। और बच्चों आम में विटामिन ए सी और ई पाए जाते हैं जो हमारी आंखों त्वचा और शरीर को स्वस्थ रखते हैं और हमें ताकत भी देते हैं और गर्मी में ताजगी भी देते हैं। और बच्चों इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं जैसे दशहरी लंगड़ा चौसा अल्फांसो, और हर आम का अपना स्वाद अलग होता है। और आप जानते हैं आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। तो प्यारे बच्चों ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इसलिए हमें मौसमी फलों का आनंद लेना चाहिए। तो अब हमने आपको आम की जानकारी दे दी, तो आप मजे से आम खाइए। आम है फलों का राजा, सबको लगता सबसे ताजा। तो आइए और एक और संदेश सुन लेते हैं।

0: आइए चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
1: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: बच्चों, अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें पता है कि आपको इंतजार है कहानी का। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कहानी ईमानदारी का फल। बच्चों, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके मम्मी पापा गरीब किसान थे और मम्मी घरेलू महिला थी। रामू जो था वो अपनी मम्मी पापा की अकेली संतान था। और बच्चों, रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन क्या हुआ कि रामू स्कूल से घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पर्स पड़ा हुआ मिला। उसने उस पर्स को उठाया और देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। तो रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के काम के हो सकते हैं और मुझे इस पर्स को इसके मालिक तक पहुँचाना चाहिए। फिर उसने उस पर्स को खोल कर देखा तो जिसका भी पर्स था उसमें उसका एड्रेस था। तो रामू ने उसका पता लिया और चल दिया उसे ढूंढने के लिए। फिर क्या था, रामू चलता गया और फिर उसे जिसका वो पर्स था उसका पता मिल गया। रामू को गया उस मतलब जिनका पर्स था उनके दरवाजे पे गया और उन्हें खटखटाया। तभी एक व्यक्ति निकला बाहर, उसने रामू को देखा और पूछा कि कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें। तो रामू ने बताया कि मैं स्कूल से आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये पर्स मिला पड़ा, तो ये पर्स ना आपका है। तभी उस आदमी को ध्यान आया कि हाँ, सुबह मेरा पर्स जो था वो गिर गया था। तो उसने तुरंत अपना पर्स उठाया और उसने खोल के देखा तो उसमें जितने पैसे थे वो पूरे के पूरे थे। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और बच्चों, वो जो आदमी था वो उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उस आदमी को ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने छोटे से बच्चे ने इतने सारे पैसे

देख के भी उसके मन में लालच नहीं आया। तो उसने रामू से पूछा कि ये पर्स तुमने, जो पर्स तुमने उठाया है, तुमने देखा कि इसमें क्या है? तो उसने कहा, हाँ इसमें ना बहुत सारे पैसे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हें इतना सारा पैसा देख के तुम्हारे मन में लालच नहीं आया कि मतलब ये पैसे हैं इतने सारे, मैं इसे रख लूं? तो रामू ने कहा, नहीं मुझे बिल्कुल लालच नहीं आया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी की दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने रामू से, मतलब वो बहुत इम्प्रेस भी हो गया कि मतलब इतना छोटा बच्चा है और कैसे अपने मम्मी पापा की बातों को फॉलो करता है। तो उसने उससे उनकी मम्मी पापा का एड्रेस लिया और वो उसके साथ रामू के घर गए और उन्होंने जाकर उनके मम्मी पापा को बहुत धन्यवाद करा कि मतलब आपका इतना अच्छा बेटा है, इतना ईमानदार है, देखिए इतना छोटा भी है तब भी कितना ईमानदार है, और रास्ते में पड़ा पर्स था, दोपहर का समय था, इतनी गर्मी हो रही थी, फिर भी ये पर्स देने मेरे घर तक आ गया और इसको कितनी परेशानी हुई होगी मेरा घर ढूंढने में। तो उन्होंने उसके मम्मी पापा को बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने देखा कि मतलब रामू के जो पेरेंट्स हैं बहुत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से मतलब अपना घर चला रहे हैं, और रामू इतना अच्छा बच्चा है, इतना पढ़ने में तेज है। तो उन्होंने उनके मम्मी पापा को कुछ पैसे देने चाहे तो उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि नहीं, हम बहुत ईमानदारी, अपने बच्चे को बहुत ईमानदारी से पालते हैं और हमने उसे सिखा रखा है कि मतलब किसी की चीज़ नहीं लेनी है और कभी भी लालच नहीं करना है। तो उन जो वो धनी व्यक्ति थे, उन्होंने उनके मम्मी पापा से अनुरोध करा और उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे से बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं इसके जो इसकी ईमानदारी है उसका मैं कुछ फल देना चाहता हूँ, और मैं इसकी जो पूरी पढ़ाई है उसका पूरा खर्चा मैं उठाना चाहता हूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे रामू के मम्मी पापा मान गए और फिर उन्होंने, जो वो व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उन्होंने रामू की काफ़ी हेल्प करी और रामू पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा, हमें ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहिए। जब हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है और सफलता की तरफ हम अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए आप बच्चे भी ईमानदारी से पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और कभी भी किसी की चीज़ के लिए लालच ना करें, कभी किसी की चीज़ ना उठाएं। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी का कोई सामान गिर गया है या कुछ है, तो आप उसे उठा के उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, या हो सकता है आप छोटे बच्चे हैं आप वहां तक ना पहुंच पाएं, तो आप अपनी मम्मी से पापा से ये बात बताएं और कोशिश करें कि जिसका जो सामान है उसको वहां तक मिल जाए। इसी तरह आप ईमानदारी से आगे बढ़ें और मेहनत करें, जिस तरह रामू ने ईमानदारी दिखाई और वो अपने जीवन में सक्सेस हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है और हमें पता है आपको इंतजार होगा प्यारे से गीत का, लेकिन बच्चों आज ये जो गीत है वो आपके लिए नहीं, वो आपकी मम्मी के लिए है। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? पत्रों द्वारा आप हमें जरूर बताएं, और उसके लिए आपको हमारा पता नोट करना पड़ेगा। कार्यक्रम बाल वाटिका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी के नजीबाबाद 246763। तो आपसे फिर मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी मदर्स डे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: दोस्त जवानी दिल दरिया की डाटे झाल डटे को नारा चढ़ जा।
1: तू मस्त जवानी दिल दरिया की
2: आहा, एहे, ओहो।

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on Mental Well-being, Rural Development, Nature Conservation and Social Transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nadu Vetrikaragam, TVK, actor-turned-politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all. After that, Mr. Vijay went to the Chief Minister's office at

0: महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आप ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியும் நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और

0: अजंता नियोग शामिल है। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभात पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है।

0: अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। एक और अनेक कार्यक्रम में श्रोताओं आज हम आपको सुनवा रहे हैं पटकथा लेखक सागर सरहदी के कुछ गीत। श्रोताओं सागर सरहदी भारतीय सिनेमा के दिग्गज पटकथा लेखक हैं। उन्होंने कभी कभी चांदनी, सिलसिला, नूरी, दीवाना, कहो ना प्यार है जैसी बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखी। एक नाटक प्रेमी होने के साथ ही उन्होंने फिल्मों के संवाद, लेखन और निर्देशन भी किए। स्मिता पाटिल की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बाजार की न केवल सागर सरहदी ने कहानी लिखी बल्कि उसके निर्माता निर्देशक भी थे। सागर सरहदी ने रंगमंच की दुनिया में फारूक शेख और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों को मौका दिया। उनका नाम उन सितारों में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर हिंदी सिनेमा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। श्रोताओं आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म से जिसका नाम है कभी कभी। स्वर लता मंगेशकर का है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोताओं, सागर सरहदी का जन्म 11 मई 1933 को बाफा पाकिस्तान में हुआ था। वह अपने गांव इटाबाबाद को छोड़कर पहले दिल्ली के केनसवे कैंप और फिर मुंबई की एक पिछड़ी बस्ती में रहे। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर फिल्मों में अपना करियर बनाया। फिल्म बाजार में उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया। इस फिल्म में स्मिता पाटिल, फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह थे। सन 1982 में रिलीज हुई ये फिल्म इंडियन क्लासिक मानी जाती है। सागर सरहदी इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और राइटर तीनों थे। उन्होंने फिल्म नूरी, सिलसिला, चांदनी, रंग, जिंदगी, कर्मयोगी, कहो ना प्यार है, कारोबार, बाजार और चौसर जैसी हिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। श्रोताओं, सागर सरहदी का नाम उन लेखकों में शुमार है जिन्होंने अपनी लेखकी से एक बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने जो भी पहचान बनाई वो अपने दम पर बनाई। उनकी लेखनी का जादू कुछ इस तरह था कि जाने माने निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी सभी बड़ी फिल्मों की कहानी उन्हीं से लिखवाई। उन दोनों की ये जोड़ी उस दौर में बेहद कामयाब मानी जाती थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी का गाया फिल्म चांदनी का ये गीत।

0: 8889।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक, और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पटकथा लेखक सागर सरहदी की। श्रोताओं, उनका नाम सागर से सागर सरहदी कैसे हुआ, आइए जानते हैं। इस पर साथ साथ सरहद पार जैसी फिल्मों के लेखक और जाने माने निर्देशक अभिनेता रमन कुमार ने बीबीसी हिंदी को बताया था कि मैं सागर जी के साथ शुरू से जुड़ा रहा हूँ, आज भी मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं से सीखा है लिखना। सरहदी सागर जी का तखल्लुस था क्योंकि वो सरहदी थे, पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान में जहाँ वे रहते थे वहाँ से अफगानिस्तान खत्म होता था और हिंदुस्तान शुरू होता था। आज़ादी से पहले उस इलाके को सरहद कहा जाता था। देश के विभाजन की वजह से उन्हें अपना घर, अपना वतन, अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। वो सरहद से आए थे इसीलिए उन्होंने अपना नाम सरहदी रख लिया था। श्रोताओं, सागर सरहदी के करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने मसीहा, मिर्जा साहिब जैसे नाटक लिखे जिसमें देश के विभाजन का जिक्र ज्यादा रहा। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब उनकी उम्र 8 से 9 साल की थी। उन्होंने उस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था। ये दर्द उनके नाटकों में भी झलकता था, लेकिन हाँ, किसी बात पर रोना उनके व्यक्तित्व में नहीं था। वो हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान ही रहे, पैसों के लिए कभी काम नहीं किया। सागर सरहदी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता करना पसंद नहीं करते थे। सागर जी अपने मन की सुनते थे, उन्होंने कभी समझौता करना पसंद ही नहीं किया। कभी कभी दूसरा आदमी सिलसिला जैसी फिल्में लिखी, वे अपने लेखन से समझौता करना कभी पसंद नहीं करते थे। उनके पास कई लोग आते थे काम के लिए, उन्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार भी रहते थे। उन्होंने राज कंवर की दीवाना लिखी, काम वही किया जो उनको पसंद आया, ये नहीं सोचा कि इसके लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो कर लूं। अभिनेता और निर्देशक राकेश रोशन उनके पास कई बार आए, वे चाहते थे कि सागर साहब उनके लिए लिखें, और तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बेटे के लिए उसकी पहली फिल्म मैं जरूर लिखूंगा। उन्होंने ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहूं ना प्यार है लिखी। तो आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म कहूं ना प्यार है से ये गीत।

और श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। हम बात कर रहे हैं पटकथा लेखक सागर सरहदी की। श्रोताओं, सागर सरहदी ने स्मिता पाटिल को लेकर बेहद खूबसूरत फिल्म बनाई थी जिसका नाम था तेरे शहर में, लेकिन इस फिल्म को कभी रिलीज ही नहीं कर पाए। इसकी वजह थी निर्माताओं के साथ फाइनेंस के झगड़े। उन्होंने कहानी लिखी, उसका निर्देशन भी किया,

इस फिल्म के रिलीज होने का मलाल उन्हें अंत तक था। और एक फिल्म चौसर थी जो पूरी तरह से तैयार थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहली फिल्म थी। फिर इसे रिलीज करने की बात चल रही थी लेकिन लॉकडाउन लग गया तो ये फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई। श्रोताओं, सागर सरहदी को न बड़े घर का शौक था न ही बड़ी गाड़ियों का। साइन में उनका एक घर था, उसी में वे अकेले रहा करते थे। क्योंकि वे शादीशुदा नहीं थे, उन्होंने खुद ये फैसला लिया था कि वे कभी शादी नहीं करेंगे। ये फैसला उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वे शादी इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम के साथ किसी तरह का समझौता न करना पड़े। वे कहते थे कि मैं वही लिखूंगा जो मैं चाहूंगा, इसके लिए मुझे अगर ज्यादा पैसे भी मिले तो मैं नहीं चाहूंगा। घर पर न बीवी थी न बच्चे, लेकिन वे कभी अकेले नहीं हुए। उनकी किताबें और नाटक से जुड़े लोग अक्सर उनके पास रहते थे। उन्हें अंत तक नाटक लिखने का शौक था और वो लिखते भी थे। थिएटर ग्रुप के लोग अक्सर उनके साथ रहा करते थे।

श्रोताओ, जाने माने निर्देशक और निर्माता रमेश तलवार सागर सरहदी के भतीजे हैं। वे इत्तफाक, त्रिशूल, कभी कभी काला पत्थर, दीवार जैसी फिल्मों के सहायक निर्देशक रहे और उन्होंने दो आदमी, बसेरा, दुनिया जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। रमेश तलवार के अनुसार उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहा करते थे। बढ़ती उम्र के कारण घर पर ही रहा करते थे और शुरू से ही वो कहते हैं, वो मेरे सगे

चाचा थे, शुरू से ही मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तब एक ऐसी फिल्म लिखी जा रही थी, लेकिन उस दौर में भी वो सबसे अलग काम कर रहे थे। जब भी किसी फिल्म की कहानी लिखनी होती थी वे एकांत में जाना पसंद करते थे, कभी खंडाला तो कभी किसी और जगह पर। उन्हें किताबों से बेहद प्यार रहा है, उनका घर किताबों से ही भरा हुआ है। उनका घर ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलेज की लाइब्रेरी हो। उनके घर पर 70% किताबें और 30% वो खुद रहा करते थे। उन्हें अंत तक भी लिखना पढ़ना पसंद था और वो रोज सुबह 5 बजे उठकर किताबें पढ़ा करते थे। श्रोताओं, बॉलीवुड के मशहूर पटकथा लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का निधन 22 मार्च 2021 की सुबह मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वो 88 साल के थे। सागर सरहदी को हार्ट प्रॉब्लम के कारण मुंबई के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया गया। उनको इससे पहले भी फरवरी 2018 में हार्ट अटैक के बाद इसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। सागर सरहदी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे पटकथा लेखक वो रहे हैं और उनकी लिखी कहानियां हमारे फिल्म जगत में और हमें आज भी मनोरंजन दे रही हैं। हमारी ओर से श्रद्धांजलि।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म बाजार से ये गीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत, और आज का अंक लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी साथी नेहा शर्मा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आपके लिए नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। आज भी हम बात करेंगे ऐसी ही खास जानकारी की, जो उन सपनों से जुड़ी है जो शिक्षा से आकार लेकर मेहनत के साथ आगे बढ़ती हैं और अवसर मिलने पर पूरे देश को नई दिशा देते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़ी अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन की।

दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई प्रतिभाशाली छात्र हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनको रोक देती हैं, उनके कदम आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसे छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की। ये योजना कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ाई बीच में न छोड़ें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग मिलता रहे। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और मेंटेनेंस अलाउंस जैसी सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है जिनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होती है और जिन्होंने पिछली परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। श्रोताओं, बात करें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की, तो ये योजना 11वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए है। ये योजना फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता देकर छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछले वर्ग पिछले

0: श्रोताओं, बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन की। श्रोताओं, आज का दौर सिर्फ डिग्री का दौर नहीं बल्कि कौशल का दौर है, कौशल को विकसित करने का दौर है। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है और दुनिया नए अवसरों की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी और कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर शिक्षा, आईटी, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और अन्य रोजगार पर क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है श्रोताओं कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं रहते बल्कि आत्मनिर्भर बनकर रोजगार देने वाले भी बन सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप डीजीटी की वेबसाइट या राज्य के व्यवसायिक प्रशिक्षण पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथियों, जब देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा तभी उन्नत भारत का सपना भी साकार होगा। इसलिए हमें जरूरत है जागरूक होने की और इन योजनाओं की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की, क्योंकि एक छात्र की शिक्षा सिर्फ उसका भविष्य नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को आगे बढ़ाती है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम भारत में रेडियो प्रसारण के सफल 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। आकाशवाणी के इन 90 वर्षों में रेडियो ने सिर्फ खबरें और गीत ही नहीं सुनाए बल्कि देश की भावनाओं, संस्कृति और विश्वास को भी संजोए रखा। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की रफ्तार तक रेडियो हर सफर में लोगों का साथी बना रहा। आज हम सिर्फ एक प्रसारण के 90 साल नहीं मना रहे बल्कि उस भरोसे का उत्सव मना रहे हैं जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, अनगिनत आवाजों को पहचान दी। और इसी क्रम में आज हमने बात की MDKV इंटर कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता विनोद शर्मा जी से, जो हमारे आकाशवाणी की नियमित श्रोता है और वर्षों से आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ी हुई है।
1: प्रिय श्रोताओं, नजीबाबाद आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस वर्ष गांठ पर मैं उल्लासित भाव अंजलि समर्पित करती हूं। मैं श्रीमती विनोद शर्मा, सेवानिवृत्त संस्कृत प्रवक्ता, मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज, अपने लंबे सेवा काल में लंबे समय से मैं आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़ी रही हूं। रेडियो ने 2026 में अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण किए हैं। यह 90 वर्ष की अवधि जो भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और सूचनात्मक परिदृश्य को एक विश्वसनीय स्तंभ के रूप में इसके महत्व में रेखांकित करती है, क्योंकि पिछले 9 दशकों में आकाशवाणी ने निर्बाध सटीक सूचनाएं जनता तक पहुंचाई हैं। आकाशवाणी ने हिंदी और स्थानीय बोलियों के प्रसार से क्षेत्रीय संस्कृति का संरक्षण किया है। इस आकाशवाणी केंद्र में बहुत अच्छे से दायित्व का वहन किया है। प्रतिभा संपन्न बालक बालिकाओं की प्रतिभा को विकसित करना देश को विकसित करने का माध्यम है हमारा यह केंद्र। रेडियो के प्रसारण को सुनने का एक विशेष आनंद है। इस केंद्र से प्रसारित कार्य श्रृंखला हमारे समाज के लिए जागृति का विशेष अंग है, साथ में जीवन को ऊर्जा देने का कार्य इसके मनोरंजक कार्यक्रम विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। यह आकाशवाणी केंद्र हमारे अंचल की संस्कृति की धरोहर को संरक्षित करता है, क्योंकि यह केंद्र स्थानीय बोलियों और ग्रामीण नगर समाज की परंपराओं को अपने प्रोग्राम के माध्यम से सजीव रख रहा है। किसानों की खेती संबंधित जीविका को विज्ञान से जोड़कर सुझावों के माध्यम से उन्नत बना रहा है। सरकार से मिलने वाली सुविधाओं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर अधिक लाभ कैसे लिया जा सकता है, ये आकाशवाणी के कार्यक्रमों से ही किसान लाभान्वित होते हैं। आज के डिजिटल युग में भी नजीबाबाद आकाशवाणी केंद्र स्थानीय समाचार और सूचना का भरोसेमंद माध्यम के रूप में परिदर्शित होता है।

0: सारांश रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि जिस निष्ठा और परायणता से इस संस्थान ने अपनी समय की लंबी यात्रा तय कर सब समाज के अंचलों और देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ाया है, आगे भी इसी तरह उत्कर्ष से अनंत समय तक विस्थापित रहे। मेरी आकाशवाणी को शुभकामना है कि उन्नति के परिधान से सजी समरी उत्थान की खुशबू से महकी महकी यह शताब्दी वर्षगांठ मनाते मनाते अपनी शुभ यात्रा की गति पर हमेशा अग्रसर रहे। जय हिंद।
1: हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, गर्व करते हैं हम उस माध्यम पर जिसने बिना चेहरे के भी लोगों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई है, जिसकी आवाज ने कभी अकेलेपन में साथ दिया तो कभी खुशियों को और भी ज्यादा खास बना दिया। तकनीक बदलती रही, दौर बदलते रहे, लेकिन रेडियो का अपनापन कभी नहीं बदला। 90 साल, एक आवाज और करोड़ों दिलों का भरोसा, यही है आकाशवाणी का सफर। आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये सफर यूं ही चलता रहे। सूचना, ज्ञान और मनोरंजन की ये आवाज हर दिल तक यूं ही पहुंचती रहे, इसी कामना के साथ मुझे यानी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष तथा कल की सभा के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। पहले जानकारी आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों की।

आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम रहेगा कुछ खास है आज, झलकी और फिल्म संगीत का।

किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा संध्या 6:05 पर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सुनिएगा फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से सुवेंद्र सिंह की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय है फसल अवशेषों के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़ा मुजफ्फरनगर। समय याद रखिएगा 6:05 पर।

कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत सुनिएगा पंकज कुमार दक्ष की कहानी एकता। इस कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45 पर। सुगम संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे अजय जोशी की गायक गजलें आज संध्या 7:32 पर।

मोहम्मद अख्तर मुल्तानी का कलाम ए शायर हमारे श्रोता आज सुनेंगे आज रात्रि 7:50 पर। कार्यक्रम का नाम है अदबी दुनिया। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज रात्रि 8:00 गीत संध्या में और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत।

श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के कुछ कार्यक्रमों की, और अब बात करते हैं कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। कल सवेरे 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में सुनिएगा जानकारी, गर्मियों में आपातकालीन स्थिति में क्या करें। खेती की बातें के अंतर्गत सुनिएगा जानकारी, ब्याहते समय पशुओं की देखभाल। इस कार्यक्रम का समय रहेगा श्रोताओं कल सवेरे 7:10 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में कल आप सुनेंगे आर्यवीर सिंह के स्वर में रागिनी। समय रहेगा कल सवेरे 9:25 पर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनेंगे आप कल पंडित सुंदरलाल गंधर्व के का बांसुरी वादन। विलंबित एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध होगी। तबले पर संगत करेंगे सनवर अली खान। और श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के और कल की सभा के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: फन भी होगा, सीख भी होगी, आज की बातें दिल के करीब भी होगी, क्योंकि संडे वो दिन है जनाब जहां सुकून भी मिलता है और हमें आपसे मिलने का अवसर भी।
1: तो नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, मैं हूं आपकी अपनी साथी राशि त्यागी और आज के कार्यक्रम का पहला पहिया।
0: जी हाँ दोस्तों, श्रेया विश्वास यानी मेरे साथ और राशि के साथ बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी और चलिए हमारे साथ संडे सफर पर।
1: इस सफर में हम आपकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे, एंटरटेनमेंट भी होगा दोस्तों और ज्ञान की इवनिंग स्नैक्स तो आपको मिलती ही रहेंगी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों इस संडे सफर में हमारी जर्नी शुरू करते हैं एक प्यारे से मीठे से म्यूजिकल रसमलाई के साथ।
1: बिल्कुल श्रेया, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अच्छे काम की शुरुआत मीठे से ही होनी चाहिए, तो चलिए सुनते हैं इस मीठे गीत को।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
4: अरे पाजी, एक शायरी सुनोगे क्या?
5: हाँ जी, आप सुनाओगे तो सुनेंगे ही। सुनाओ सुनाओ।
4: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
5: ओहो पाजी लड़की को देखा, ओहो
4: दूसरी लड़की को देखा तो वैसा लगा,
5: दूसरी को देखा तो कैसा लगा, रंगीन मिजाज है आपके तो पाजी।
4: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दूसरी लड़की को देखा तो वैसा लगा, पर दोनों ने थप्पड़ मारा तो एक जैसा लगा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे आसास कर लोट कोट,
0: क्योंकि यह लाफ्टर का सॉलिड डो।
6: माँ, आपको लिखना वैसा ही है जैसे समंदर को मिट्टी से भरना, क्योंकि आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं, आप तो पूरा संसार हो। जब मैं छोटी थी तो हर डर से पहले आपका हाथ पकड़ लेती थी, और अब जब बड़ी हो गई हूँ तो आज भी दुनिया की भीड़ में सबसे ज़्यादा सुकून आपकी आवाज़ में मिलता है। आपको पता है माँ, हम अक्सर सोचते हैं कि आप कुछ नहीं समझते, लेकिन सच तो ये है कि आप वो भी समझ जाती हो जो हम खुद से भी छुपा लेते हैं। चेहरे की हल्की सी उदासी, आवाज़ की थकान, और वो मैं ठीक हूँ माँ के पीछे छुपा दर्द, सब पकड़ लेती हो आप। आपने कभी अपने बारे में सोचा ही कब था? आपकी अलमारी में पुरानी साड़ियाँ भरती रही और हमारे सपने नए होते गए, आपकी नींद कम होती गई और हमारी रातें सुकून से गुजरती रही। आप थकती भी थी शायद, पर कभी जताती नहीं। माँ, आपका प्यार बड़ा अजीब होता है, डांटती भी हो फिर खुद ही खाना लेकर पीछे आ जाती हो, नाराज भी होती हो लेकिन देर होने पर बार बार दरवाजे तक आकर देखती भी हो, और हम अक्सर ये सोचकर बड़े हो जाते हैं कि माँ तो हमेशा साथ रहेगी, पर एक दिन अचानक एहसास सा होता है कि जिस औरत को हम सिर्फ माँ कहते थे उसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर, उसने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी सैलरी नहीं मांगी, बस प्यार दिया, बेहिसाब प्यार, बिना किसी शर्तों के। हाँ, बस हमारी खुशियाँ जरूर मांगती थी। जब घर से दूर जाते हैं ना, तब समझ आता है कि माँ सिर्फ इंसान नहीं होती, घर की धड़कन होती है। उसके बिना रसोई में खाना तो बनता है लेकिन स्वाद नहीं आता, कमरे वैसे ही रहते हैं लेकिन घर घर घर नहीं लगता। माँ, आपके हाथों की वो खुशबू, सिर पर रखा वो हाथ, और बिना

0: समझ लेने की आदत। ये दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। अगर कभी जिंदगी में बहुत थक जाऊँ ना, तो बस आपकी याद आती है। आप कुछ शायद खास तो नहीं कहती, पर जब पूछती हूँ थक गए क्या, और पता नहीं क्यों उस एक सवाल में पूरा सुकून मिल जाता है। दोस्तों, माँ के लिए सिर्फ एक दिन कभी काफी हो ही नहीं सकता,
1: क्योंकि जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी हो, उसे सिर्फ एक तारीख में कैसे समेटा जा सकता है।
0: लेकिन शायद ये एक दिन हमें इसलिए मिला है ताकि भागती हुई जिंदगी में हम थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना सीख लें।
1: आज का दिन माँ की पसंद याद करने का दिन है, उन्हें हर छोटी चीज से खुश करने का दिन है।
0: अगर हो सके तो उनकी पसंद की मिठाई ले आइए, उनके साथ बैठकर चाय पीजिए और कुछ देर बस उनकी बातें सुन लीजिए।
1: और अगर आप उनसे दूर हैं तो आज 15-20 मिनट का एक फोन आप उन्हें कर लीजिए। यकीन मानिए, उनकी आवाज ही आपकी उनकी सबसे बड़ी खुशी होगी।
0: और अगर जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि वो भी नहीं हो पा रहा, तो बस एक बार उनसे पूछ लीजिए, माँ आप ठीक तो हो ना?
1: क्योंकि कई बार माँ को महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते, उन्हें सिर्फ एक एहसास चाहिए होता है कि उनका बच्चा आज भी उन्हें पहले ही जितना प्यार करता है।
0: तो आज थोड़ा वक्त अपनी माँ के नाम कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में माँ जैसा प्यार ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। सो हैप्पी
1: हैप्पी
0: मदर्स
1: मदर्स डे
0: डे।
1: टू ऑल मदर्स।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: सपने देखने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन सपनों के लिए आज मेहनत करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं।
4: और दोस्तों, आज हम बात भी ऐसे ही आदत की करने वाले हैं, तो जो धीरे धीरे सपने, आत्मविश्वास और समय तीनों को खा जाती है।
3: एक ऐसा शब्द जो हर स्टूडेंट, एम्प्लॉय और शायद हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।
4: हमारे आज के सेगमेंट कुछ खास है। आज का हीरो है प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें।
3: आज हम जानेंगे आखिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है और सबसे जरूरी, इसे खत्म कैसे करें।
4: श्रेया यार, कल करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर में कर लूंगी यार, अभी मेरा मूड नहीं है कुछ भी करने का।
3: अगर आप लोग भी राशि की तरह इन्हीं लाइंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं तो दोस्तों, वेलकम टू द क्लब।
4: क्योंकि मेरी तरह श्रेया, हम अपने अंदर एक छोटा सा इंसान, एक ऐसा बैठा होता है जो हमेशा हमें कहता है यार, बस 5 मिनट और फोन चला ले, ये काम तो हो ही जाएगा।
3: लेकिन राशि, वही 5 मिनट कभी कभी हमारे सपनों को सालों पीछे कर देता है। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों वेलकम बैक फ्रॉम आर फ्रेंच फ्राइड म्यूजिकल ब्रेक। और जैसे कि आप जानते हैं हम बात कर रहे थे हमारे आज के हीरो यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें।
1: बिल्कुल दोस्तों, दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कल से पक्का शुरू कर दूंगा।
0: लेकिन राशि, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम समझे तो सही कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है।
1: सीधी भाषा में दोस्तों कह सकते हैं कि जरूरी काम को टाल देना जो आप हमेशा करते हैं और फिर बाद में उसके लिए रिग्रेट फील करना।
0: जी बिल्कुल। अच्छा मान लो राशि कि तुम्हें एक असाइनमेंट सबमिट करना है कल, जैसे कल ही करना हो, और तुम यहाँ से जाके क्या करोगी? रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम क्या करोगी। तुम थोड़ा फोन चलाओगी, उसके बाद फोन चलाने के बाद अपनी टेबल साफ करोगी, पेन वेन ढूंढोगी, फिर पानी भी पियोगी थोड़ा सा, और देखते ही देखते पूरी रात निकल जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने श्रेया, तुमने तो पूरा प्रोसेस ही समझा दिया। श्रेया बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि आलसी लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सच में ये काम कर लूंगा, पक्का कल करूंगा, लेकिन वो कल शायद कभी भी नहीं आता।
0: देखो राशि, कई बार इसके पीछे आलसी नहीं होता है, साथ साथ डर भी होता है। फेलियर का डर, परफेक्ट बनने का प्रेशर होता है, या फिर दिमाग में ऐसा होता है कि बहुत सारा काम जब एक साथ करने लग जाते हो ना, तो आपका दिमाग भी डर जाता है।
1: दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सिंपल उपाय ये है कि आप खुद से कहो कि यह काम कितना आसान है, मैं 5 मिनट में करके यूं खत्म करूंगा।
0: बिल्कुल। वैसे राशि, मेरा मानना यह है कि सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कि स्टार्ट करना। आप शुरुआत कीजिए और देखिए धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाते हैं, दिमाग आपका काम करने लग जाता है।
1: क्योंकि हम स्टार्ट से किसी काम को बहुत बड़े फ्रेम में देखते हैं। जैसे तुम यही ले लो कि जिम जाने का मन नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं जाते नहीं जाते, लेकिन फिर बाद में हम शूज पहनते हैं, रेडी होते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद शूज पहनने के बाद, रेडी होने के बाद सोचते हैं यार जब इतना सब कुछ किया है तो फिर चलते ही हैं।
0: बिल्कुल। अब शूज पहनने के बाद बैठ थोड़ी जाओगे वापस। दोस्तों हम अक्सर पूरे पहाड़ को देखकर डर जाते हैं, लेकिन पहाड़ भी तो छोटे छोटे कदमों से चढ़ा जा सकता है ना।
1: बहुत से लोग इसलिए भी शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए स्टार्टिंग से।
0: बिल्कुल। अब हमारे प्रोग्राम जैसा सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों याद रखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहला स्टेप परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही स्टेप आपको आगे ले जाएगा।
1: आज का छोटा सा कदम कल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव बन सकता है प्यारे दोस्तों।
0: तो उठिए, छोटी शुरुआत कीजिए और अपने सपनों को कल नहीं आज दीजिए। इसी के साथ ले चलते हैं आपको हमारे एंटरटेनमेंट के डोज यानी सफर पर, और इस म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

0: तो दोस्तों वेलकम बैक। और हमारी गाड़ी लैंड कर चुकी है आसमानों से और अब बारी है एक और एंटरटेनमेंट डोज की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट छलकी की, जिसमें आप जानेंगे कि सोशल मीडिया की जो आदत है वो खराब है, क्योंकि ज्यादा आदत, देखो ज्यादा आदत किसी की भी खराब हो सकती है। तो आइए सुनते हैं ये झलकी, जिसे लिखा है हमारी ही साथी राशि ने।
1: झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलकी झलकी झलकी झलकी झलकी
2: झलकी दिखला जा।
3: आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो असल जिंदगी से ज्यादा ऑनलाइन दुनिया में जीती है। नाम है रिद्धि। हाथ में फोन ऐसे चिपका रहता है जैसे फोन नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर हो।
4: ओहो, मेरी नई रील पर 500 लाइक्स, भाई आज तो मैं वायरल हो जाऊंगी। माँ,
5: रिद्धि पहले नाश्ता कर ले फिर देश संभाल लेना।
4: ओ माँ प्लीज, कंटेंट क्रिएटर की लाइफ आप नहीं समझो।
5: हाँ बेटा समझ गई, दिन में फोन घुमाओ और रात को आंखें मलो, वो यही तो है तेरा काम।
3: रिद्धि को लगता था कि सोशल मीडिया ही उसकी पूरी लाइफ है। सुबह उठते ही फोन, खाते समय फोन, यहाँ तक कि बाथरूम में भी फोन। अबे रिद्धि सुन, कल ना मैथ का टेस्ट है।
4: हाँ तो क्या हुआ यार, वैसे भी मैंने हाउ टू स्टडी इन वन नाइट वाली 12 वीडियो देख ली है।
3: भाई रिद्धि तू ना पढ़ाई तो देख कम करती है और मोटिवेशन वीडियो तू ज्यादा ही देख रही है कुछ।
4: वंशिका एक बात कहूँ, तुझे लगता है मैं एक दिन बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनूंगी?
3: इन्फ्लुएंसर का तो नहीं पता मुझे, बन भी सकती है लेकिन घर वालों को क्या खिलाएगी तू?
4: लाइक्स खिला दूंगी और क्या।
3: एक दिन रिद्धि ने सोचा कि आज ना मैं एक ऐसी रील बनाऊंगी कि पूरा शहर मुझे जान जाए।
4: वंशिका यार तू एक काम कर, वीडियो चालू कर, मैं बाइक के सामने स्लो मोशन में चलूंगी और हम एक वीडियो बनाएंगे।
3: अरे पागल है क्या, गिर जाएगी।
4: अरे वंशी रिस्क नहीं तो रील नहीं।
6: अरे बच्चों सामने से हटो, मरना है क्या?
3: रिद्धि मैं कह रही थी ना तुझसे, रील के चक्कर में अपनी रियल लाइफ खराब मत कर तू। उस दिन पहली बार रिद्धि डर गई थी। रात को वो चुपचाप बैठी थी।
5: क्या हुआ बेटा, आज फोन कैसे शांत है?
4: माँ कल बाइक पर वीडियो बनाते बनाते ना एक्सीडेंट होते होते बचा मेरा। एक अंकल मिले थे, उन्होंने और डांट दिया।
5: मेरी बात तो तुझे समझ ही नहीं आती, पर एक बात बता, तेरा चोट तो नहीं लगी, तू ठीक है ना?
4: हाँ माँ मैं ठीक तो हूँ, चोट नहीं लगी पर अब मेरा मन ठीक नहीं है।
5: हाँ बेटा मैं कहती हूँ ना, फोन बुरा नहीं है पर इंसान को चलाने लगे तो परेशानी हो जाती है।
4: हाँ माँ मुझे लगता है मैं असल जिंदगी भूल ही गई थी।
5: तुझे याद है बेटा, पहले तू गिटार बजाती थी, खेलती थी, किताबें पढ़ती थी, अब रील बनाती है या रील देखती है।
3: उस रात रिद्धि ने पहली बार अपना फोन साइड में रखा। अबे आज तेरा इंस्टाग्राम डाउन है क्या, सुबह से ऑनलाइन नहीं दिखी?
4: नहीं भाई, आज से मैं रियल लाइफ में ऑनलाइन हूँ।
3: मतलब क्या रिद्धि?
4: भाई पता, मैंने आज सुबह दौड़ लग गई, पापा के साथ चाय पी और आज सच में पढ़ाई भी की।
3: हे भगवान, ये तो चमत्कार ही कर दिया तूने।
4: सोशल मीडिया रहेगा लेकिन अब वो मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं करेगा।
3: सही है भाई रिद्धि, तुझे पता है फोन ना जेब में अच्छा लगता है, दिमाग में नहीं। दोस्तों सोशल मीडिया गलत नहीं है, गलत तब होता है जब हम अपनी असली खुशी, अपने सपने और अपने लोग भूल जाते हैं। फोन का इस्तेमाल करें लेकिन जिंदगी को स्क्रॉल मत होने दें। असली हीरो वो है जो अपने जिंदगी को बैलेंस करना सीख जाए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: यार मेरे मन में एक बात आई है।
5: अब जब मन में बात आ ही गई है तो उसे बयां भी कर ही दो।
4: दोस्तों और मेरे यारों, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे और वो हमें मुड़ मुड़ कर देखते रहे।
5: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
4: हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें और वो हमें, हम उन्हें और वो हमें।
3: अरे आगे क्या हुआ?
4: मुड़ मुड़ कर यूं देखा, क्योंकि परीक्षा में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें।
3: वाह वाह वाह वाह।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
6: राशि एक बात बताओ, जैसे आज मदर्स डे है तो तुम क्या कर रही हो अपनी मदर के लिए?
7: श्रेया, ऐसे कुछ सोचा तो नहीं है, पर मैंने ना अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी ऑर्डर की थी, वो आने वाली है। वो होप सो आ भी गई हो, और बस यहाँ से जाते ही स्टॉप पे रुकना है स्वीट्स के, क्योंकि मेरी माँ को ना वो बहुत पसंद है, काजू कतली।
6: ओह काजू कतली, ये तो बहुत बढ़िया है, कपड़े के साथ साथ मिठाई भी, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा वैसे इतनी बात हो गई है ना मीठी मीठी की, तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा कुछ मीठा काजू कतली टाइप सॉन्ग हो जाए।
7: बिल्कुल, तुम्हारा मन कर रहा हो तो हमारे दोस्तों का भी मन जरूर कर रहा होगा, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, संडे सफर की गाड़ी हमारी आखिरी स्टॉप पर आ ही चुकी है, तो अपने सामान का ध्यान आप खुद रखेंगे, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट का की जिम्मेदारी अभी भी हमारी है। तो चलिए दोस्तों, एंटरटेनमेंट का डोज जारी रहेगा इस प्यारे से आखिरी म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

0: दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां वाले प्रोग्राम्स हमारे YouTube चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने साथी राशि त्यागी
1: और श्रेया विश्वास
0: को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा

0: है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई स्वराज्य खुशी। देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भाई देखो खेती किसानी ठीक ठाक चले भी क्यों ना, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई रात दिन मेहनत भी तो खूब कर रहे हैं भाई अपने खेतों में। भैया चाहे दिन हो या रात हो या भैया दोपहरा हो, भैया उसमें जो है धूप को नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, भैया काम में लगे रहते हैं। भाई चाहे हमें फसलों की सिंचाई करनी हो, अब भैया हमारे खेतों में जो है इस समय देखो कुछ गेहूं की कटाई के बाद के खेत हमारे खाली पड़े हैं, उसमें भैया हमारे किसान भाइयों की देखो पिछली बारिश हो ही गई थी तो उससे भैया खेतों में नमी हो गई और हमारे किसान भाई अब जाओ उनकी एक गहरी जुताई में लगे हुए हैं। दूसरी बात भाई आती है कि भैया जो हम अगली फसल बोनी है, यानी कि भैया खरीफ का मौसम धीरे धीरे हमारे किसान भाइयों के लिए आ ही गया है और हमारे किसान भाई खरीफ मौसम में भैया धान की फसल लगाते हैं, तो भाई उसकी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, कौन सा बीज हम बोना है, कौन सा बीज लगाना है, और भाई अच्छी जो हम प्रजाति का बीज है भैया वो हमारे किसान भाई खरीदने में लगे हुए हैं। खैर भाई देखो बातचीत तो हम खेती किसानी की और भी करेंगे, साथ ही साथ फसलों की सिंचाई के संबंध में भी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन भाई पहले कार्यक्रम में देखो आज दिन रविवार है तो सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला का ये वाला पाठ। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा,
1: जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है।

0: स्वागत है हमारे सभी किसान बहन भाइयों का फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला में। और भैया, इस रेडियो कृषि पाठशाला के साथ में मैं हूं आपका भैया जितेंद्र कुमार, और मेरी सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, ये फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला आप सुन रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा के सौजन्य से। और भाई देखो, मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा से आप रेडियो कृषि पाठशाला और दिनों में भी सुन रहे हैं, और भाई हम हर दिन आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिससे भाई आपको अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, जो हमारे फसल अवशेष हैं भैया, या गन्ने के जो बचे हुए खेत में मूड़ होते हैं, वो भी भैया फसल अवशेषों में ही आते हैं, जो कि भैया धान की पुआल को भैया काट कर अपने पशुओं के लिए चारे में प्रयोग करते हैं। और भाई जो गेहूं का भूसा होता है भाई, वो तो बहुत ही कीमती होता है। किसान भाइयों, हम जो है अपने फसल अवशेषों को काट फाट कर अपने खेतों में मिलाना है ताकि भाई हमारे खेत उपजाऊ हो सकें और हमें भैया लंबे समय तक अच्छा उत्पादन दे सकें। किसान भाइयों, फसल अवशेष भैया हमारे किसान भाई क्या काम कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी में खेत बोने के चक्कर में उनमें आग लगा दें, तो भाई ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आग लगाने से कितने ही नुकसान फसल अवशेषों में हमारे खेत की मिट्टी को, हमारे पर्यावरण को, मानव स्वास्थ्य को होता है। भाई देखो, यदि हम अपने फसल अवशेषों में चाहे भैया उसमें यदि आग लगा देंगे तो भैया देखो मिट्टी की जो परत है ऊपरी, भैया वो जलकर नष्ट हो जाएगी, साथ ही साथ जो भैया पर्यावरण है हमारा वो भैया प्रदूषित हो जाता है धुएं से, और दूसरे भाई जो हमारे खेत में मित्र कीट हमारे पड़े हैं भैया वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इससे भैया हमारे खेत की मिट्टी को काफी क्षति होती है, काफी नुकसान होता है, और भाई उपजाऊ क्षमता भी हमारे खेतों की मिट्टी की घट जाती है। तो किसान भाइयों, हम काम ऐसा करना है जिससे भैया हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे, हम लंबे समय तक अच्छा उत्पादन दे सके, साथ ही साथ भैया हम जो है अपने फसल अवशेषों का प्रयोग करके अपने खेतों की मिट्टी को सुधार सकें। दूसरे भाई, यदि हम अपने जो फसल अवशेष हैं भैया, चाहे धान की पुआल हो या गन्ने की पत्ती हो भाई, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर और भैया उसको जो है भिगो कर तो खाद बना ले मैं, तो भाई वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई आजकल भाई हमारे जो नौजवान साथी हैं वो खेती के साथ साथ कुछ सह व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो भैया देखो एक ऐसी ही जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। जिन भाइयों के पास जमीन नहीं भी है भैया, वो भी जो है मशरूम का उत्पादन अपने घर पर ही अपने एक कमरे में कर सकते हैं। तो भैया एक ऐसी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं भाई, जानकारी का विषय है फसल अवशेषों के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करना। किसान भाइयों, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया सुवेंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: किसान भाइयों, फसल अवशेष प्रबंधन रेडियो कृषि पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, फसल अवशेषों के प्रबंधन के बारे में आप इस पाठशाला में पूरी जानकारी ले रहे हैं, और हमारा आज का विषय है फसल अवशेषों के द्वारा मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करना। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बघरा मुजफ्फरनगर में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: किसान भाइयों नमस्कार।
1: तो राक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फसल अवशेषों का जो हम सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो फसल अवशेष प्रबंधन हमारे लिए क्यों जरूरी है?
2: फसल अवशेष, फसलों की कटाई और गाई के बाद जो शेष भाग बच जाता है, तना है, डंठल है, पत्ते हैं, छिलका, उनका हम कैसे समुचित प्रबंधन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: और किसान भाइयों को इसके लिए जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फसल अवशेष को कुछ किसान भाई खेतों में जला देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। भूमि में जो लाभदायक कीटाणु जीवाणु मित्र जीव मित्र कीट होते हैं, केंचुआ वगैरह, वो सब नष्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो उन जीवों का संरक्षण करना, मित्र जीवों का संरक्षण करना प्रकृति में बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो वायु की गुणवत्ता है वो भी प्रभावित हो, और जलाने से जो उसके फसल अवशेष के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यदि उनको अच्छी तरह से सड़ा गला करके खेत में उनको मिला दिया जाए तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन भी सीधे सीधे बढ़ता है।
1: बिल्कुल। तो राक साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें जो हमारे फसल अवशेष होते हैं उनमें आग नहीं लगानी है, उनको जलाना नहीं है, बल्कि हमें उनका समुचित प्रबंधन करना है ताकि हम जो

0: अब आपने बताए हैं वो लाभ हम ले सकें और नुकसान से बच सकें। तो देखिए डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे किसान भाई जो हमारे फसल अवशेष हैं उन्हें काट फाट करके जो है हम अपने खेत में मिलाते हैं, उनको जोत देते हैं और कंपोस्ट खाद के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो कि फसल अवशेषों के माध्यम से कुछ और भी वो काम में लाते हैं और कुछ आमदनी का जरिया उनसे ढूंढते हैं, और ऐसा ही हमारा एक जरिया है मशरूम उत्पादन, जिसमें हमारे किसान भाई इन फसल अवशेषों से कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं मशरूम उत्पादन के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन फसल अवशेष हैं जिनसे हम मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं?
1: देखिए, मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट खाद का होना बहुत जरूरी है,
0: जी
1: बेसमेंट बेस। और मशरूम खाद तैयार करने के लिए, हम कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उसमें भूसा, धान की पराली, सरसों की कड़वी, सरसों की पराली, इन सब का हम इस्तेमाल जो है, केले का छिलका और जो भी हमारे फसल अवशेष हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि जो हमारे फसल अवशेष हैं उनसे हम मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं।
1: जी
0: तो अब बात ये आती है डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि जैसे हमारे धान के पुआल है, गेहूं का भूसा है, सरसों की अवशेष हैं,
1: जी
0: इसके अलावा और भी हमारे फसल अवशेष हैं, तो इन सभी का इस्तेमाल हमारे किसान भाई जो है कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि हम मशरूम उत्पादन ले सकें।
1: जी
0: तो अब हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि हमें किस तरीके से ऐसे कौन कौन से काम करने हैं, किन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना है जिससे कि हम ये कंपोस्ट तैयार कर सकें?
1: देखिए, खाद बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा गेहूं का भूसा होता है या धान की पराली होती है
0: जी
1: उसको भिगो लेते हैं। और इसकी दो विधियां हैं कंपोस्ट खाद तैयार करने की, एक तो लघु विधि है, एक दीर्घ विधि है।
0: जी
1: जो हमारी लघु विधि है उसके लिए ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें एक कमरे की टनल की आवश्यकता होती है, उसमें ब्लोवर से टेम्परेचर जो है, तापक्रम मेंटेन किया जाता है। और जो हमारी दीर्घ विधि है इसमें हमारा लगभग 28 दिन का समय खाद बनाने के लिए लगता है।
0: अच्छा
1: और इसमें खाद को अच्छी तरह से भूसे को पानी में भिगो करके उसको उसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे।
0: जी
1: और इसमें इसकी 7-8 पलटाई भी करनी होती है, 8 पलटाई करनी होती है और इसमें 28 दिन का समय लगता है। तो शुरुआत में ये मान के चलिए हमारे पास एक छोटी यूनिट है, 30 फीट 30 बाई 20, 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा एक कमरा है। उसमें हम 50,000 रुपये से शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं,
0: जी
1: तो हम 2.5 से 3 लाख रुपए की मशरूम प्रतिवर्ष ले सकते हैं। इससे मतलब ये हुआ कि सीधा 50,000 रुपये आप लगा करके 2.5 से 3 लाख का 5 से 6 गुना तक आपको बेनिफिट, लाभ सीधे सीधे मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: इसकी खाद तैयार करने के लिए सर्वप्रथम भूसे को, गेहूं के भूसे को गीले पानी से भिगोया जाता है,
0: अच्छा
1: 24 घंटे तक उसको भिगो करके रखते हैं। और बेहतर होगा कि उसमें पानी को, जब उसको भिगो करके रखें उसमें फॉर्मेलिन, 100 लीटर पानी में 100 ml फॉर्मेलिन और दूसरे 7 ग्राम बावस्टीन उसमें
0: अच्छा
1: मिला लें। और यदि हम बावस्टीन मिला लेते हैं तो बावस्टीन मिलाने से फफूंदी नहीं, दूसरी जो फफूंदी है केवल हमारी उसमें मशरूम ही हमें पैदा करनी है, तो उसको दूसरी कोई फफूंदी ना हो गए और दूसरा उसमें कीट का प्रकोप ना हो, तो उसके लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व जैसे यूरिया है आपका, DAP है, यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटास है, सिंगल सुपर फास्फेट है, दूसरे पोषक तत्व है, जिप्सम है, गेहूं का चोकर है, मुर्गी की बीट है, सीरा है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ये सब पोषक तत्व तो इसमें जो है मिलाए जाते हैं ताकि इसकी खाद की अच्छी, कंपोस्ट की अच्छी गुणवत्ता हमें प्राप्त हो सके।
0: जी
1: इसके लिए हम शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि पहले उसको 24 घंटे तक अच्छी तरह से फरस पर फैला लेते हैं, ये 1 फीट ऊंचाई तक जो है उसका फैला करके और गीले पानी से 24 घंटे तक उसको जो है भिगो करके रखते हैं।
0: जी
1: उसके बाद उसका जो पानी, एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल देते हैं, ड्रेन कर देते हैं। उसके बाद पानी निकालने के बाद उसको ढेर बना लेते हैं।
0: अच्छा
1: तो जब ढेर बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए उसमें अच्छी तरह से पोषक तत्व, तो जैसे कि हमने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये 6 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हम उसमें मिला लेते हैं, 3 किलो उसमें यूरिया है, 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और उसमें गेहूं का चोकर
0: जी
1: 10 किलो।

0: दो चीजों है, एक तो नमी हमारी जो है नमी बरकरार रहनी चाहिए, नमी उसमें मेंटेन रखना चाहिए,
1: जी
0: नमी के लिए उसमें समय समय में पानी का छिड़काव करते रहें, और दूसरे ये है कि उसमें जो है हम तापक्रम मेंटेन करते रहें।
1: अच्छा
0: जब हम ढेर बनाते हैं तो ढेर के अंदर का हम देखते हैं कि टेम्परेचर अंदर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता
1: ज्यादा
0: है,
1: हो जाता है
0: और
1: जी।
0: नमी का पहचान करने का एक सामान्य तरीका है कि हम भूसे को मुट्ठी में दबा करके देखते हैं। यदि उंगली के बीच से पानी निकल रहा है
1: जी
0: तो इसका मतलब नमी पर्याप्त है, और दूसरे यदि वो उसमें से लड्डू की तरह अगर बंधा रहता है तो नमी पर्याप्त है, यदि खुल जाता है तो नमी पर्याप्त नहीं है। तो पानी उसमें पानी छिड़क करके नमी को मेंटेन रखते हैं, और जैसे उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री चला जाता है तो जो लाभदायक जीवाणु उसके अंदर होते हैं वो सूक्ष्म जीव उसमें फर्मेंटेशन क्रिया, किण्वन की क्रिया शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर का सड़ना सड़ाव शुरू हो जाता है।
1: जी
0: बाहर का जो ढेर का हिस्सा होता है उसमें कई बार टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री रहता है, लेकिन अंदर जो है 70 तक पहुंच जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगली बार जो है हम जब पलटाई करते हैं, 6ठे दिन पहली पलटाई करते हैं, तो जो अंदर का है, अंदर का भूसा है उसको बाहर कर देते हैं, अंदर का फसल उसे, जो बाहर है उसको अंदर ले
1: अंदर कर
0: आते हैं,
1: देते हैं।
0: इस तरह पलटाई करते हैं। और पहली पलटाई के समय जो शेष बची हुई हमारी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा थी हमारी 3 किलोग्राम, उसको मिला देते हैं, और जो है हम उसको फिर से ढेर बना देते हैं।
1: अच्छा
0: उसके बाद दूसरी पलटाई 10वें दिन करते हैं, और फिर तीन तीन दिन के अंतराल पर हम उसकी जो है
1: पलटाई
0: आठ
1: करते हैं।
0: पलटाई करते चले जाते हैं। जैसे 10 दिन के बाद फिर 13 दिन, फिर 16 दिन, 19 दिन, 22 दिन, 25 दिन, और आठवीं पलटाई फिर हम 28वें दिन करते हैं।
1: बिल्कुल
0: जब तीसरी पलटाई हम कर 13वें दिन जब हम तीसरी पलटाई करते हैं
1: जी
0: तो उसमें जो जिप्सम की मात्रा है 30 किलोग्राम जिप्सम हम उसमें मिला देते हैं ताकि
1: अच्छा
0: उसकी गुणवत्ता बनी रहे, और 28 दिन बाद जब हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है तो फिर उसमें दो चीजों को जांचना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: एक तो उसमें नमी, उसमें 60 से 65% तक नमी होनी चाहिए, और दूसरे उसमें अमोनिया की गंध,
1: अच्छा
0: अमोनिया ना हो तो उसको सूंघ करके देखते हैं। अमोनिया की गंध जैसे कि पशुशाला में गोमूत्र में से, गोबर में से बदबू आती है, स्मेल आती है, इसी तरह जो है हम उसको सूंघ करके देखते हैं। यदि अमोनिया उसमें बची हुई है, पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो उसको एक बार फिर 2-3 दिन के लिए एक पलटाई फिर उसको कर देते हैं उसको उसी तरह, और यदि उसमें अमोनिया गंध नहीं आ रही है तो हमारी खाद तैयार हो गई है।
1: अच्छा तो इस तरीके से ये 28 दिन में लगभग हमारी जो खाद है वो तैयार हो
0: जी
1: जाती है
0: जी
1: जी। बिल्कुल, देखिए आपने विस्तार से पूरी जानकारी हमारे भाइयों को दी है, और जो हमारे किसान में मशरूम उत्पादन शुरू करना चाहते हैं वो इस तरीके से 28 दिन में कंपोस्ट खाद हम तैयार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब हमारे किसान में ये भी जानना चाह रहे होंगे कि मान लीजिए हमने कंपोस्ट खाद तो तैयार कर ली है, तो किस तरीके से हमें जो हमारे मशरूम के स्पॉन है, जो बीज है, वो
0: जी
1: किस तरीके से हमें उसमें डालना है
0: जी देखिए, मशरूम की खेती एक ये ऐसी खेती है
1: जी।
0: कि ये एक लैंडलेस कल्टीवेशन इसको कहा जाता है। जिस किसान भाई के पास जमीन भी नहीं है, जमीन, वो भी इसकी खेती कर सकता है।
1: जी
0: जो किसान भाइयों के पास अनुपयुक्त कमरे, बेकार कमरे पड़े हुए हैं, झोपड़ी है, छप्पर है, उसमें भी इसको उगा सकते हैं। मशरूम की खेती के लिए एक तो छायादार स्थान होना चाहिए
1: जी
0: जो है, अंधेरे में ये उगती है इसको, और दूसरे इसके लिए नमी 80 से 90% नमी की आवश्यकता होती है, और तापक्रम की हम बात करें तो इसमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको तापक्रम की आवश्यकता होती है, और वैसे तो पूरे वर्ष भर हम इसकी जो है वातानुकूलित स्थिति में खेती कर सकते हैं।
1: जी
0: मशरूम की खेती के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है,
1: जी
0: एक तो कंपोस्टिंग खाद तैयार करना,
1: बिल्कुल
0: दूसरा इसकी स्पॉनिंग बीजाई, जो इसको बीज डालते हैं उसको स्पॉनिंग बोलते हैं
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में, और तीसरी केसिंग, केसिंग मिश्रण। तो अभी हमने आपको बताया, जानकारी दी कैसे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, इसके बाद फिर इसकी बीजाई कैसे करते हैं। तो जो
1: जी
0: मशरूम का बीज होता है वो सफेद रंग का, ये हम कोई भी फूड सबस्टेज है, गेहूं के दाने, उसके ऊपर माइसिलियम लिपटा रहता है, तो उसमें हम 1 कुंटल अगर हमारे पास कंपोस्ट है
1: जी
0: तो 10-10 किलो के 10 बैग है, तो हम उसमें 500 से 700 ग्राम स्पान जो है बीज उसमें बिजाई कर देते हैं। जो हमने खाद, कंपोस्ट खाद तैयार की थी, उस खाद को पॉलिथीन में, पॉली बैग्स में भर करके,
1: जी
0: और बीच में उसमें अच्छी तरह से स्पान को मिला देते हैं, और उसको तीन सप्ताह

0: अब बाद हम देखते हैं कि उसमें सफेद सफेद रंग के पूरा कवक जाल जो है पूरे कंपोस्ट खाद में फैल जाता
1: फैल
0: है,
1: जाता है।
0: और फिर उसके बाद उसको खोल करके जैसे ही उसमें कवक जाल फैल जाता है तो उसमें केसिंग करते हैं। तो केसिंग जो होती है, केसिंग एक तरह से खाद का आवरण होता है जो 1 से 1.5 इंच लेयर जो है हम उस पर बैग पर ऊपर से फैला देते हैं।
1: जी
0: उसके लिए सामान्य तरीका है कि 50% मिट्टी, जितने बराबर की मिट्टी और उतनी सड़ी गोबर की खाद दोनों को एक जगह मिला लीजिए।
1: अच्छा
0: सड़ी हुई गोबर की खाद हो हम और ये वर्मी कंपोस्ट हो, या उसमें हम मिट्टी
1: जी
0: मिट्टी का और सड़ी गोबर की खाद का बराबर बराबर 50-50% रेशो ले लेते हैं, और उसको एक ढेर बना लेते हैं। ढेर बना करके उसको फॉर्मेलिन से, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, फॉर्मेलिन और बावस्टीन का कार्बंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं। कार्बंडाजिम से हमारी दूसरी फफूंदी, उसके अंदर कवक नहीं उगती है, और दूसरे जो हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई कीट वगैरह का प्रकोप जो है, कीट से बचाव हो जाता है। तो उससे दोनों से उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं, उपचारित कर लेते हैं, उसको ढक करके रख देते हैं सुबह से शाम तक। उसके बाद उसको फिर 1 से 1.5 इंच लेयर में उसको उसके ऊपर फैला देते हैं
1: जी
0: केसिंग। तो केसिंग जैसे ही हम करते हैं तो हम देखते हैं 3-4 दिन बाद उसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है, सफेद सफेद जो है मशरूम जो है उसमें आनी शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये हमारे जो अगेरिकस मशरूम है, बटन मशरूम है, उसका था। प्लूरोटस का में खाद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्लूरोटस को जो ढेंगरी मशरूम होता है उसमें हम सीधे ही पैकेट में भूसा भर के उसमें बिजाई कर देते हैं।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस तरीके से हमारे किसान भाई कंपोस्ट जो है तैयार कर सकते हैं फसल अवशेषों के माध्यम से, और हम मशरूम उत्पादन ले सकते हैं। तो इस
0: जी
1: तरीके से हमारे किसान भाई फसल अवशेषों के माध्यम से अपनी अतिरिक्त आमदनी भी इससे ले सकते हैं। तो
0: जी
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में, और आपने हमारे किसान भाइयों को मशरूम उत्पादन के लिए हम किस तरीके से कंपोस्ट खाद तैयार करें, कैसे मशरूम उत्पादन ले, इस बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई, देखो कितनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने फसल अवशेषों के संबंध में दी कि किस तरह से हमारे किसान भाई फसल अवशेषों से भैया कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, और साथ ही साथ भाई जो फसल अवशेष हमारे, चाहे धान की पुआल हो या गन्ने की पाती हो भैया, उसको काट फाट के और किस तरह से भैया मशरूम का उत्पादन वो कर सकते हैं। भाई एक बंद कमरे में भैया पोलोथीन बैग में भैया हम उसे भर कर रख लेना है, और उसमें भैया हम स्पोन यानी कि मशरूम का जो बीज होता है उसे स्पोन बोलते हैं, उस स्पोन को उसमें डाल देना है और उसमें भैया छेद कर देने हैं। भाई जब छेद कर देते हैं तो मशरूम भैया हमारी 10 से 15 दिनों के बाद उसमें निकलनी स्टार्ट हो जाती है सफेद रंग की। तो भाई इस तरह से हमारे किसान भाई बिना खेतों के भी अच्छा उत्पादन मशरूम से ले सकते हैं, और भाई एक लाभ अपनी खेती किसानी से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप करेंगे फसल अवशेषों का सही से प्रबंधन, तो हो जाएगा हमारे खेतों का अभिनंदन और हो जाएगा फसल अवशेष प्रबंधन।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
1: कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर चित्तौड़ा,
0: जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है।
2: तो अभी हमारे भाइयों ने ये रेडियो कृषि पाठशाला सुनी और अब भाई कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, हम जो है जो हमारे फसल अवशेष हैं उनका तो प्रबंधन हमारे किसान भाई कर लेते हैं, और भाई हमारे किसान भाई प्रबंधन क्या करते हैं भाई, जागरूक हो गए। और जागरूक के साथ साथ भाई आजकल जैसे हमारे किसान भाई अपने फसल अवशेष आग लगा दिए थे, तो भाई वो आग नहीं लगाते, उनका सही से प्रबंधन कर लें, या भैया उन्हें खेत से निकाल कर बाहर अपना डाल लेते हैं और उसके बाद भैया उन्हें मल्चिंग में प्रयोग कर लेते हैं। तो भाई देखो, जब मल्चिंग में प्रयोग कर लेंगे तो भाई हमारे किसान भाइयों को और अधिक लाभ हो जाता है। लाभ क्या हो?

पता कि भाई जब मल्चिंग हम अपने खेत में कर देंगे, फसल के बीच में कर देंगे जो खाली स्थान होता है, तो भाई उसमें जो है नमी का संरक्षण हो जाता है। देखो भाई बात तो हम कर रहे हैं नमी के संरक्षण की, और बात हम देखो भैया कुछ फसलों की सिंचाई की भी आपसे करेंगे थोड़ी सी एक। तो भाई पहले क्यों ना ये जरूरी संदेश सुन लिए जाए, तो आइए सुनते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: तो भाई इस संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई हम बात कर रहे थे फसलों में मल्चिंग की, कि भाई यदि हम फसल अवशेषों की अपनी फसलों में मल्चिंग कर दें, भाई कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं, चाहे भाई सब्जियों की ले लो या भैया कोई अन्य फसल ले लो, एक धान की फसल तो ऐसी है जिसमें भाई हम मल्चिंग नहीं कर सकते, या गेहूँ की फसल है उसमें हम मल्चिंग नहीं कर सकते, लेकिन भाई जो हमारी गन्ने की फसल है इस समय हमारे खेतों में खड़ी है, साथ ही कुछ अन्य फसलें होती हैं भैया, उनमें हमारे किसान भाई जो है मल्चिंग करके भैया अपने खेतों में पानी को बचा सकते हैं, यानी कि सिंचाई का जो पानी हम लगा हुआ है ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, जब मल्चिंग कर देंगे तो भाई सीधे सूर्य का जो प्रकाश है वो जमीन पर नहीं आएगा, और जमीन पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो भैया जो हमारे खेत में नमी संरक्षित है वो भैया कुछ लंबे समय तक चलती रहेगी, यानी कि हमारे जो फसल है जो पौधे हैं फसल के भैया उन्हें जो है वो खेत की नमी पर्याप्त रूप से मिलती रहेगी। भाई देखो जब हम बात कर रहे हैं फसलों में सिंचाई प्रबंधन की, तो भैया फसल हमारी कोई भी हो, चाहे गन्ने की हो धान की हो या चारे वाली फसलें हो, क्योंकि भाई हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ भैया पशुपालन भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई पशु और खेती भाई दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। भाई देखो बिना पशुओं की खेती अधूरी है और खेती के बिना भैया पशु अधूरे हैं, यदि भैया हमने पशु रख रखे हैं तो भाई उनके चारे में हमें दिक्कत आवेगी, तो भाई हमें चारा भी बोना पड़ा है, तो भाई चारे की फसलों को सिंचाई भी करनी पड़े है हमारे खेतों में। इस समय देखो ज्वार बाजरा और भैया मक्का की फसल खड़ी, जिसमें हमारे किसान भाई अपने पशुओं को खिला रहे हैं, और खिला के भैया हमारे पशु अच्छा दूध उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं, तो भाई हमारी फसल को सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। हमारे किसान भाई यो सोचे करें कि भाई हम जो है एक बार हमने पानी दे दिया तो भैया एक महीने की छुट्टी कर दो, यानी कि खेत को लबालब डोल बराबर मेड़ बराबर भर दो, और भाई उसको जो है जब मेड़ बराबर भर देंगे तो एक महीने की छुट्टी हो जाएगी, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फसल को मात्र नमी की आवश्यकता होती है, न कि भैया जल भराव की। भाई जो जल भराव हो जाता है हमारी फसल में उससे भैया हमारी फसल को तो है ही है, साथ ही साथ भैया पानी का अत्यधिक दोहन है। देखो कुछ पानी जो है जमीन में नीचे चला जाएगा, जड़ों से लीच कर जाएगा, भाई जड़ों की जो भैया पहुंच है उससे दूर पहुंच जाता है, दूसरे भैया कुछ पानी जो है सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल में उड़ जाता है, यानी बाष्पीकृत हो जाता है, तो भाई वो जो है पानी हमारा खराब हो जाता है, और उससे भैया हमारे किसान भाइयों की समय भी लागत भी और भैया खर्च भी काफी बढ़ जाता है। और भैया हम काम क्या करना, हम भैया आजकल जो हमारी नई नई तकनीक चल रही है सिंचाई की, जैसे भैया ड्रिप

इरिगेशन हो या बौछारी विधि हो भाई, उससे यदि हम सिंचाई करें तो देखो पानी की तो बचत हो ही जाती है, साथ ही साथ हमारी फसलों को भैया सीमित पानी मिलता है, पर्याप्त नमी हमारे खेतों में बनी रहती है। दूसरे भाई, यदि आप जो है तकनीक का प्रयोग नहीं भी कर रहे तो भाई अपने खेतों में पानी मेड़ बराबर बिल्कुल भी ना भरें। भाई आपको करना क्या, आपको सिंचाई कर दें आप, और भाई उसके बाद आपको सिंचाई की संख्या बढ़ानी है, न कि भैया आपको उसमें खेत में समय लगाना। मान लो भैया हमारी 5 बीघे जमीन है और हमने जो है भैया 10-12 घंटे में वो खेत को लबालब भर कर भर दिया, तो भाई हमारा जो है तेल का खर्च भी बढ़ेगा, समय भी खराब होगा, और भाई साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों की जो मशीनरी है वो भी भैया खराब होगी। तो भाई हम जो है काफी तरह का ध्यान रखना है, मेड़ों के बराबर हमें पानी नहीं भरना है। तो भाई ऐसा काम हमें करना कि हमारे खेतों में हमारी फसलों को पर्याप्त नमी मिलती रहे, यानी जल्दी जल्दी आप सिंचाई करते रहें। दूसरे भाई एक चीज का हमें ध्यान रखना कि भाई हमारे खेत की मिट्टी किस प्रकार की है, यह जरूर ध्यान रखना। भाई हमारे खेत की मिट्टी यदि रेतली है तो भाई उसको आप जल्दी जल्दी 5 से 7 दिनों में सिंचाई करें, और भाई दूसरे यदि हमारे खेत की दोमट मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है तो उसको आप समय को देखते हुए और मौसम को देखते हुए आप सिंचाई करें, ताकि भैया आपकी फसलों का जो उत्पादन है आपको अच्छा मिले। दूसरे भाई एक बात और थोड़ी सी हम किसान भाइयों से कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी सब्जी वाली फसलें हमारे किसान भाई उगाते हैं, भाई उनको पानी की जो है सिंचाई की बार बार जरूरत होती है, न कि भैया जल भराव की। तो भाई आप उसको हल्की सिंचाई करते रहें सब्जी वाली फसलों में, और समय को देखते हुए मौसम को देखते हुए अपनी खेती कार्य भैया समय से करते रहें। और भाई इस तरह से यदि आप अपने खेतों में अपनी फसलों में सिंचाई करेंगे तो भैया आपके समय का खर्च की लागत का दुरुपयोग नहीं होगा, और आपको खेती किसानी से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और भाई आपकी आमदनी में 4 चांद लग जाएंगे। तो भाई देखो जब बात लाभ की होती है तो लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो किसान भाइयों को गीत संगीत की ओर भी लिए चलेंगे, लेकिन भाई पहले कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: AIR at 90.
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: तो भाई देखो, संदेश तो हमने सुन लिए और भाई संदेश से पहले हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे कि भैया किसान भाइयों को मनोरंजन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि भाई हमारे किसान भाइयों को इंतजार रहता है गीत संगीत का। तो भाई बिना देर किए आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं भुवनेश गिरी से यो प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे भाइयों ने ये प्यारी सी रागनी सुनी, मीठे खारे समंदर हैं कोई बहने वाला नहीं मिला। भाइयों उम्मीद करते हैं आपकी दिन भर की थकान उतर गई होगी और आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। और भाई देखो, अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त किसान भाई उसे बिल्कुल भी नहीं दे रही है। लेकिन भाई देखो, थोड़ा सा समय तो हम लेंगे ही आपका कि भाई एक चिट्ठी हमें मिली है मौसम की। भैया ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश। भाई इस चिट्ठी के अनुसार बिजनौर के आसपास भैया देखो 13 या 13 में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, गरज चमक के साथ आंधी तूफान आ सकता है। तो भाई आप मौसम को देखते हुए अपनी खेती किसानी के काम करें और भाई जिन भाइयों को सिंचाई करनी है तो भैया वो जो है मौसम से अपडेटेड आप आवश्यक रूप से रहें। और अब भाई देखो कार्यक्रम में आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपकी चिट्ठी

पत्रों का इंतजार रहेगा। और एक भैया, एक हमारा मोबाइल नंबर है, 94-5707-82-88। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आप सुनेंगे पंकज कुमार दक्ष की कहानी एकता।
1: शाम का झुकमुका हो चला था। गांव में दोनों समाज के बीच उपस्थित तनाव के वातावरण को देख अब तो डूबते सूरज को इस गांव की अगली सुबह पर विश्वास नहीं रहा था। फिर भी डूब ही गया था आने वाली सुबह तक के लिए। गांव में उपस्थित इतने तनावपूर्ण वातावरण के बावजूद दो किशोर मोहन और गोपाल बस्ती से दूर बैठे गांव की वर्तमान दुखद स्थिति के बारे में चिंताग्रस्त थे। क्यों मोहन, क्या हमारे गांव की एकता का अब अंतिम समय आ गया है? क्या दूसरे गांव वाले जब हमारे संघर्ष को सुनेंगे तो हमको क्या कहेंगे? हमारा सुंदर गांव कल एक वीरान बस्ती बन जाएगा तो क्या हम कभी अपने को क्षमा कर सकेंगे? कहते कहते गोपाल के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दूर तक खिंच गईं। गोपाल की आंखों में नमी देखकर मोहन भी मायूस चेहरे से कहने लगा, मुझे तो ताजुब यह है कि गांव में घटना को अंजाम किसने दिया और इतने कड़े पहरे के बाद भी ऐसा काम किसने किया? आसपास किसी ने किसी को घूमता भी नहीं देखा। कहता तो तू ठीक है मोहन, तो फिर मुझे तो इसमें किसी की चाल मालूम देती है। जरूर ही गांव के कुछ आदमी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे, कुछ समझ में नहीं अब आता। हे भगवान, हमारी और हमारे गांव की रक्षा कर। गोपाल आसमान की ओर हाथ जोड़कर कहने लगा कि वही तो रह गया है जो हमारी रक्षा कर सकता है। मोहन और गोपाल उठकर पास के बाग में चले गए। गोपाल बाग में घूमने के बहाने कुछ आसपास को निकल गया। गोपाल एक ओर से दौड़ता हुआ आया, हांफता हुआ कहने लगा, मोहन ऊपर वाले ने शायद हमारी सुन ली, चल जल्दी चल, उस गिरे हुए पेड़ के पीछे कुछ आदमी बैठे हैं। गोपाल का हाथ पकड़े उधर ही दौड़ पड़ा जिधर से आया था। कुछ दूर जाकर दोनों रुक गए, फिर धीरे धीरे सधे कदमों से बिना आवाज किए गिरे पेड़ के निकट पहुंचकर रुक गए। यहां से वे उन व्यक्तियों को भली भांति देख रहे थे जो अभी आकर वहां रुके थे। उन्होंने वहां किसी के आने की प्रतीक्षा थी। सो सब लोग निश्चिंत हो बीड़ी सिगरेट में दम लगा रहे थे। शाम का झुकमुका काफी तेज हो चला था। इतने में एक ओर से दो आदमी निकल आए और उन्हीं में मिल गए। उन आदमियों को देखते ही पहले आने वाले आदमियों में से एक बोल उठा, बहुत देर कर दी आने में, कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाद में आए व्यक्तियों में से एक बोल उठा, गांव वालों की निगाह से बचकर किसी तरह यहां पहुंच सका हूं, बस परवरदिगार को दुआ दो, अभी अभी मीटिंग हुई है, सुबह वह सब कुछ होने की उम्मीद है जो आप चाहते हैं। और तुम्हारे समाज में क्या हो रहा है रामलाल? षड्यंत्रकारी बाद में आए दूसरे आदमी से पूछने लगे, जो दशा तुम्हारी ओर है वही हमारे ओर है, अब हमारी धनराशि दे दो।

0: तो ठीक रहेगा। लो आधे आज ले लो, आधे कल काम होने के बाद ले लेना। षड्यंत्रकारियों ने कुछ लिया दिया। मोहन और गोपाल अपने अपने घनिष्ठों का नाम षड्यंत्रकारियों के मुंह से सुनते ही चौंक गए। बाग में रुके सब व्यक्ति अपने अपने मार्ग को चले गए, लेकिन मोहन और गोपाल वहीं बैठकर कुछ सोचने लगे। तू ठीक कहता था मोहन, इतने कड़े पहरे के बाद भी जो घटना घटी उसमें उन्हीं के हाथ हैं, गोपाल मोहन से कहने लगा। हाँ गोपाल, उन दोनों पर किसी का शक भी नहीं हुआ और उनका षड्यंत्र सफल हो गया। मोहन गोपाल से बोला, लेकिन मोहन तेरे और मेरे घनिष्ठों का पैसे के लिए इतना घिनौना काम करने की क्या आवश्यकता थी? क्या पिछले 20 वर्षों की दोस्ती का उन्होंने गांव के लिए यह कर्ज चुकाया है? गोपाल, पैसे के लिए सुना तो था कि आदमी अपना जमीर भी बेच देते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष भी देख लिया है। मोहन दार्शनिकता में बहने लगा। मेरे घनिष्ठ और तेरे घनिष्ठ की मित्रता यदि इस गांव पर कहर ढाने को तैयार है, तो हम कसम खाते हैं कि दोनों की मित्रता इस गांव की एकता और शांति को भंग नहीं होने देगी। इसके लिए चाहे हमें प्राणों की बाजू ही क्यों न लगानी पड़े। इसके बाद दोनों देर रात गए कि कल की संभावित घटना और अपनी योजना के बारे में परामर्श करते रहे। वे किसी भी भयानक संघर्ष के लिए तैयार हो चुके थे। राम सिंह और रामलाल का कहीं पता नहीं था। इधर मोहन और गोपाल भी एक और खड़े सोच रहे थे। गोपाल कह रहा था, मोहन, यदि हम अपने अपने मित्रों का भंडाफोड़ करते हैं तो वे समाज से अलग कर दिए जाएंगे। दोनों घरों का जीवन नरक बन सकता है। देख तो ऐसे समय वे दोनों गांव के बाहर शायद उस गिरोह के पास पैसे लेने गए हैं। तो फिर इस खून खराबे को रोकने का कोई और उपाय भी तो नहीं है? अच्छा एक बात बता, तू भी वह रुपए निकाल लाया जो तेरे मित्र को कल शाम उन बदमाशों ने दिए थे? हाँ, मोहन बोला, तू भी ले आया? हाँ, गोपाल ने सिर हिला दिया। अरे गोपाल देख, दोनों ओर से गाली गलौज शुरू हो गई है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता देख मोहन कहने लगा, क्या करें यार, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ी देर में ही 10-20 लाश नजर आएंगी। मोहन ने गोपाल के कान में कुछ कहा। फिर गोपाल पूछने लगा, बोल तैयार है इस बलिदान के लिए? हाँ बिल्कुल, हमारे मित्रों को इसका प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित का रूप भी ऐसा ही होगा जो आगे कभी कोई व्यक्ति अपने गांव के साथ विश्वासघात न कर सके। उधर दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। किसी भी समय लाठी बल्लम चल सकते थे। मोहन और गोपाल दूसरे ही क्षण दोनों के बीच बरसते पत्थरों में घुस गए। ठहरो, मोहन अपने समाज को संबोधित करते हुए बोला, और गोपाल अपने समाज के लिए, आप लोगों ने कभी इस झगड़े के कारणों का सोचा है? गोपाल पूर्व ऐलान के अनुसार बोल रहा था। उधर मोहन भी, क्या कभी सोचा है आपने कि इतने कड़े पहरे के बावजूद भी क्या ऐसा हो सकता था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें अपने अपने समाज के आदमियों का हाथ है। कौन है वे आदमी, हमें बताओ, हम उन्हें जान से मार डालेंगे। अनगिनत हत्याओं से तो केवल दो ही हत्याएं हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। हाँ ठाकुर, हम बेकार ही आपस में लड़ने मरने को तैयार हैं। जल्दी बता मोहन, कौन है वे गद्दार जिसने हमारे समाज के साथ गद्दारी की है? बोल गोपाल, कह दूं, तैयार है तू? मोहन फुसफुसाया, हाँ चल अपने अपने समाज के निकट और बता दे। कहकर गोपाल आगे बढ़ गया। ये हैं वे नोट जो मुझे कुछ आदमियों ने दिए थे। गोपाल अपने समाज को नोट दिखाता हुआ कहने लगा। उधर मोहन ने समाज को संबोधित किया, और ये वे नोट हैं जिनके लिए मैंने गद्दारी की थी। गोपाल और मोहन ने अपने अपने मित्रों का अपराध अपने अपने सिर ले लिया। फिर क्या था, क्रोध रूपी शैतान सर पर चढ़ गया। कई दिनों से जो दोनों समाज को जो खून की लाल प्यास उठ रही थी, शांत करने का समय आ गया था। किसी ने ना कुछ सोचा और ना समझने का प्रयत्न किया। समाज के भी व्यक्तियों ने गोपाल और मोहन को घेर लिया और देखते देखते लाठियों की वर्षा शुरू होने लगी। लाल प्यास जब शांत हुई और भीड़ वहां से हटी तो दो किशोर लाल बलिदानी रंग में सरावोर जमीन पर पड़े तड़फ रहे थे। एकता का परिणाम भुगतना पड़ा। राम सिंह और रामलाल का अब तक कोई पता नहीं था। शायद विधाता ने उनके अमानुषिक और भयंकर अपराध का यही दंड दिया था।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत कहानी एकता। कहानीकार थे पंकज कुमार दक्ष। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम छाया गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है फिल्म गैम्बलर से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम छाया गीत की शुरुआत में खूबसूरत सा गीत आपने सुना, नीरज के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम था गैम्बलर और इस गीत को आवाज़ दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सौतन की बेटी से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, सावन कुमार ने गीत लिखा है और विपुल शर्मा का संगीत है।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज में आपने ये गीत सुना फिल्म सौतन की बेटी से। शब्द रचना सावन कुमार की थी श्रोताओं, और धुन तैयार की थी विपुल शर्मा ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम छाया गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म पड़ोसन से। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत के बोल लिखे हैं और इस गीत की धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:10 हुए हैं श्रोताओं।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। लीजिए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। पहले जानकारी कुछ आज के विशेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30

इस मिनट पर सुनिएगा नेशनल साइंस मैगजीन रेडियो स्कॉपी और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण हमारे सभी श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे अजय जोशी के स्वर में गजल। समय रहेगा आज संध्या 7:32 पर।

मोहम्मद अख्तर मुल्तानी का कलाम शायर हमारे श्रोता सुनेंगे आज रात्रि 7:50 पर कार्यक्रम अदबी दुनिया के अंतर्गत। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे आज रात्रि 8:00 गीत संध्या में और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म झुक गया आसमान के कुछ गीत। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। अब बात करते हैं कल के कुछ खास प्रोग्राम के संदर्भ में। कल सवेरे 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में सुनिएगा जानकारी, गर्मियों में आपातकालीन स्थिति में क्या करें।

खेती की बातें के अंतर्गत सुनिएगा जानकारी ब्याहते समय पशुओं की देखभाल। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल सवेरे 7:10 पर।

कल सवेरे 7:32 पर सुनिएगा सूचना ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। और श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण के सफल 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारे विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर का समय रहेगा कल सवेरे 10 बजे। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के तथा कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो

0: चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा, तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा।

0: कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा, आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey guys, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अजय जोशी के स्वर में गजल।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं अजय जोशी के स्वर में गजल।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अजय जोशी के स्वर में गजल। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 7:50 हुए हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है अदबी दुनिया, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहम्मद अख्तर मुल्तानी का कलाम-ए-शायर।

तुम तो अपने जख्म दिखाने बैठ गए और मैंने तो कुछ शेर सुनाए।

झुकी सी पलकें, ये खुले खुले से गेसू।

मैं बड़े सकून से था, गम आशुकी से पहले मैं बड़े सकून।

मुझे शोहरतें मिली हैं।

0: था कोई शायरी से पहले, मुझे जानता नहीं था कोई शायरी से पहले। शुक्रिया दादा।
1: अदबी दुनिया के अंतर्गत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना मोहम्मद अख्तर मुल्तानी का कलामे शायर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। नमस्कार श्रोताओं, संगीत की इस मधुर शाम में आपका दिल से स्वागत करती हूँ मैं, आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा। श्रोताओं, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है कुछ सुकून के पल चुराने का, कुछ ऐसे गीतों के साथ जो कभी होठों पर मुस्कान बनकर आते हैं तो कभी दिल की खामोशियों को आवाज दे जाते हैं। श्रोताओं, प्यार, प्यार एक ऐसा एहसास जिसने शब्दों को कभी बांधा ही नहीं और जिसे शब्दों में बांधना आसान भी नहीं है। कभी यह दिल को सुकून देता है तो कभी वही प्यार दिल को बेचैन भी कर देता है। किसी के लिए प्यार दिल का चैन है तो किसी के लिए दिल का रोग। लेकिन सच बात तो यही है श्रोताओं कि जब ये होता है तो जिंदगी की हर धड़कन में बस एक ही नाम सुनाई देता है। और इसी खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये गीत आइए सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से। आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति की हैं, सुधाकर शर्मा के शब्द हैं और आनंद राज आनंद का संगीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। साथियों, जब किसी से प्यार होता है ना, तो उसकी हर बात खास लगने लगती है। उसकी हंसी में ही सुकून मिलता है और उसकी आवाज जैसे दिल के किसी कोने में धीरे से उतर जाती है। कभी वो आवाज बारिश की पहली बूंद जैसी लगती है, तो कभी कोयल की मीठी मीठी बोली जैसी, जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देखिए, अभी आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम सुनते सुनते भी अपने प्यार को याद करके मुस्कुरा ही रहे होंगे। साथियों, प्यार का रिश्ता वाकई बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। यहाँ शब्द तो कम पड़ जाते हैं, लेकिन एहसास हर बात कह जाते हैं।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की सुंदर आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म बेटा से। समीर के लिखे बोल थे और श्रोताओं आनंद मिलिंद का संगीत था। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बरसात से। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। समीर का लिखा ये गीत है और नदीम श्रवण का संगीत। श्रोताओं, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की जो बातें हैं वो सीधा कह पाना आसान नहीं होता, इसीलिए तो लोग गीतों का, शायरी का, कविताओं का सहारा लेते हैं। और ये वक्त भी कुछ ऐसा ही है, जो शाम का ये समय है, सब अपने कामकाज से लौटकर गीत संगीत से ही अपनी थकान उतारते हैं। और हम भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बिस्तर में लेटकर या कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने प्यार को याद करके बस यही कहना चाहते होंगे कि तुम्हारे होने से ही ये दुनिया खूबसूरत

प्यार गहरा होता है, वहाँ रूठना भी होता है और मनाना भी होता है, क्योंकि जो दिल के सबसे करीब होता है उसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें भी होती हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि अभी कुछ ही देर पहले ही आपकी किसी बात पर छोटी मोटी सी कोई नोकझोंक हुई होगी, अनबन हुई होगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद किसी गीत से या अपने महबूब की आवाज़ से या उसके प्यार से आपका दिल फिर से उसकी तरफ खिंचा चला आया होगा, है ना?

श्रोताओं, रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की आवाज में गुनाह फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत आपने सुना। आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था और साजिद वाजिद का संगीत था। कार्यक्रम आपको पता ही है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और मैं हूं आपके साथी नेहा शर्मा। श्रोताओं, जब मोहब्बत दिल में पूरी तरह उतर जाए ना, तो फिर हर धड़कन में बस उसी का एहसास रहता है। चेहरे पर मुस्कान की वजह भी वही और दिल

कि बेचैनी का कारण भी वही। कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो, सिर्फ एक इंसान के प्यार ने जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया हो। और शायद इसी एहसास को दीवानगी कहते हैं, जब दिल पर हर पल उसी के करीब रहना चाहे और उसी एक इंसान का कब्जा हो जाए। तो श्रोताओं, गीत संध्या की इस प्यारी सी महफिल में वक्त है आज के अंतिम गीत का। ये गीत उन सभी दिलों के नाम जो प्यार में सचमुच दीवाने हो चुके हैं।

श्रोताओं, अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में कूली नंबर वन फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या को अब संपन्न करने की अपनी साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान के कुछ गीत।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और ये कार्यक्रम आप लाइव सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान के कुछ गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आपने सुने झुक गया आसमान फिल्म के कुछ गीत। इन सभी गीतों को आवाज दी थी श्रोताओं मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के लिखे ये गीत थे और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज आपने सुने फिल्म झुक गया आसमान के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और

0: औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल

0: पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल।

0: हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra

2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलचीज स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की, जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक़ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव कल 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर्रे आजमी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफ्फुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नीरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है। मरकजी वज़ीरे दाखिला अमित शाह ने इम्कानी सैलाब और शदीद गर्मी से निमटने की मुल्क की तैयारी से मुतल्लिक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने काबीना में तौसी की है। उन्होंने 2 काबीना वजीरों और 4 वज़राए मुमलिकत को शामिल किया है। भारत और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने सियाहत हिफ्जान सेहत और आयुर्वेद शोबों में 8 माहदों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में खुदकुश हमले में हिफाजती अमले के 15 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: In the national program of features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: ये आकाशवाणी है। रविवार स्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: This is आकाशवाणी। In tonight's broadcast of रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, we bring you a veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on ghatam Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnatak sangeetkar hain. एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल

0: की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। चार दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: Aaj raat ke prasaran mein विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदिताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by श्री यशवंत हम्पी होली and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास concludes his Veena recital with a composition of Sadashiva Brahmendra in the rag Ahir Bhairavi set to Aditaal.

0: इसके साथ ही आज की रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर

0: पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।